सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म

0: पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरुनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI ने अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। जीवन में हमारे विचार ही हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को दिशा देते हैं। कुछ सार्थक विचारों के साथ आज की सुबह को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

सत्य वो है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है और जिसमें सभी का कल्याण है। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध है वही सत्य बोल सकता है, वही सत्य शोधक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की प्रत्येक अवस्था में सत्य सनातन है, निश्चल, पवित्र और आनंददायक है। हम मनुष्यों को व्यावहारिक जगत में रहते हुए सत्य शोधक होना चाहिए। इसके लिए सत्य के असीम सौंदर्य और इसके महत्व को समझते हुए हमें अपने दैनिक लोक व्यवहार में विवेक के प्रकाश को आत्मसात करना होगा। हमारे अंतस का अनुभव सत्य है, ये चेतना से भरपूर है, ये शांति और आनंद देता है। बाह्य सुख सुविधाएं अंतस को आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि परम आनंद तो आत्मा के ज्ञान से मिलता है और आत्मा चेतना का प्रकाश हमारे अंतस या अंतःकरण को पावन करती है, क्योंकि इससे अज्ञान दूर होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा परम लक्ष्य है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का साधक अपने अभिमान, अज्ञान की आहुति देकर अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से उजागर कर देता है। सत्य का शोधक संसार के दुर्गुणों को ध्वस्त करते हुए कदम से कदम बढ़ाकर नई सामाजिक संरचना और नए युग का निर्माता बनता है। आइए आज सुबह की शुरुआत सत्य के शोधक बनकर समाज को नई दिशा देने के शुभ प्रयास से करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आम चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। सुबह की शुरुआत जब ईश्वर के स्मरण और मधुर भक्ति स्वरों के साथ होती है तो वातावरण भी भक्तिमय हो उठता है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है।
1: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती ने बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसान वाणी का।

7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या, 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 10:20 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं, 10:00 समय रहेगा जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेती में बात कार्यक्रम।
1: खेती निवाद कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने

0: अरे आपने खेतर में खाद या जे उर्वरक है इन्हें नखवानी आवश्यकता पड़े है, पर अगर आपने आनो ज्यादा या कम उपयोग करो तो ई आपकी फसल और खेतर ने जे मिट्टी है इन्हें बेने बल्ले नुकसानदायक साबित है। अटले आनो संतुलित उपयोग करो बहुत आवश्यक है। संतुलित उपयोग ने अगर आप बात करो तो फसल नी जे जरूरत है और मिट्टी नी जे स्थिति है इन्हें अनुसार खातर या उर्वरक अपने खेतर में नाखव जुए। आने बल्ले सप्ती के पहले तो अपने मिट्टी नु यानी जे मृदा है इनी जांच करावी दीवी जुए, जेने अपना जे मृदा परीक्षण ने नाम थे कि जाना हो। आना मृदा परीक्षण थे कि आपने खबर पड़ेगा कि आपने खेतर में कई कई पोषक तत्व कम है और कितनी मात्रा में ने आलवानी आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाई अगर आपने खाद या उर्वरक जे है इनु असंतुलित उपयोग करेंगा तो एना थी कि नुकसान थाएगा। वधारा नाइट्रोजन अगर आपने फसल में आल देंगा तो फसल देखागा तो हरी भरी, पर ई धीरे धीरे ही पड़वा लगेगा और इन वजह से कि फसल नो अपने जो उत्पादन है ये कम थी जाएगा। पोटाश की जो कमी है इन थे कि पौधे ही कमजोर थाए ने इनमें रोग है ये जल्दी पकड़ी ले है। वधारे रासायनिक खाद नाखवाते कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये भी धीरे धीरे कम थाती जाएगा और वधारे खातर नाखीज रहा तो अपनी जो खेती ने लागत है इनमें भी बढ़ोतरी थी जा, तो खेती ने लागत बढ़ी जाए। अटले कुल मलाई ने अगर आपने उर्वरक या खातर नो संतुलित उपयोग करेंगा तो आपने आ सब जो नुकसान है इन नहीं थाएंगा और आना जो लाभ है ये आपने मिलेगा। और लाभ ने अगर आपने बात कर तो आना थे कि यही फसल ने पूर्व पोषण मिलेगा, इन वजह थे कि आपने उत्पादन है ये ठीक मिलेगा, खेतर नी जो मिट्टी है इनी सेहत है ये बनेली रहेगा, लागत भी कम आवेगा तो इन्हें थी कि आपने लाभ है मुनाफो है ये वधारा मिलेगा। आज ये पर्यावरण है या जे आ भूजल है भूमिगत जे जल है ई वधारे खातर ने दवाई आपने नहीं नाखेंगा तो ई प्रदूषित नहीं थागा। तो आ जे रासायनिक खाद है एनो अगर आपने संतुलित उपयोग करेंगा तो अपने लाभ मिलेगा। और किसान भाई अगर आपने रासायनिक खाद ने हाथे हाथे जैविक खाद है जेम के आ गोबर नो खाद है वर्मी कम्पोस्ट है हरी खाद है आनो भी अपने उपयोग खेतर में करवो जोईए। आने थे कि जे मिट्टी में जे सूक्ष्म जीव है इनकी संख्या बढ़े, जे कि है आपने एक तरह थे कि आपने फसल बल्ले उपयोगी रहे और खेतर में आ लंबा समय तक इन्हें उपजाऊ बनाबा में भी सहायक बने हैं। अटले हमेशा सही मात्रा में सही समय ऊपर ने सही तरीका थे कि इस खातर आपने खेतर में आलवूज हुए आ सही आपने आज में खेती नो विज्ञान है आना महत्व ने आपने समझू है और उर्वरक नो संतुलित उपयोग करवो है। सब जानो किसान भाई के मानव शरीर हो पशु हो खेतर ने मिट्टी हो या काई भी एवी चीज जिनमें असंतुलित मात्रा में कई चीज नो उपयोग करे कोई भी तेनो नुकसान तो था है। अति थी जा ये हमेशा नुकसान करे चाहे मनुष्य नो स्वास्थ्य हो आपकी फसल नो स्वास्थ्य हो या आपने पशुधन नो स्वास्थ्य हो, तो आने सबने स्वास्थ्य ने बनाई रखवा बल्ले हर चीज नो संतुलित उपयोग करवो आवश्यक है। और एनी वजह थी कि आपने अपने खेतर में रासायनिक जे खाद उर्वरक है एनो सही उपयोग करवो आवड़ जुए। आने वजह थी कि आपने अच्छे उत्पादन मिलेगा अच्छी पैदावार मिलेगा और जो उत्पादन है इन्हें गुणवत्ता भी अच्छी रहेगा, तो इन्हें वजह थी कि आपने ना बाजार में भाव अच्छा मिलेगा। तो आई सब बातों आपने ध्यान रखी ने संतुलित तरीका थे कि आपने उर्वरक नो छिड़काव खेतर में करूज हुए। तो किसान भाई बात उर्वरक खाद नहीं संतुलित उपयोग नहीं बात अगाड़ी भी करेंगे, पर आज नो जो समय है ये पूरा थी रो है काले कई नवी जानकारी लेने आपने फिर मिल तार तक आप आलो आज मानजी भाई ने आज्ञा ए आवजु राम राम राम राम।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना खेती की बात कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अपेश है लोक संगीत ईश्वरदास व साथियों के स्वर में।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: अजीज जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: स्टेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
0: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रीरा

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना ईश्वरदास व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं डॉक्टर लोकेंद्र कलाल।
1: तनाव प्रबंधन। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है। जीवन में भागा दौड़ी आम बात है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और संवेदनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। जीवन की इस आपाधापे में कई तरह की समस्याएं आती हैं। व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का साहस से सामना करता है तो उबर जाता है और उबर कर निखर जाता है, किंतु यदि समस्या

चर्चा जस के तस बनी रहती है तो वह कुंठित होने लगता है और यही कुंठा धीरे धीरे तनाव के रूप में उभरती है। वैसे सामान्यतः तनाव कई बार लाभप्रद भी होता है। इससे व्यक्ति अपने कार्य सही समय पर संपादित कर देता है या लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, किंतु यदि तनाव उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना उसे रुग्ण कर देता है, वह बीमार हो जाता है। आज अधिकांश समस्याएं मनोशारीरिक स्वरूप लिए हुए हैं। आधुनिक युग में एकाकी प्रवृत्ति और जीवन के कारण तनाव की समस्या एक भयंकर समस्या बन गई है। तनाव के बढ़ते प्रकोप के कारण मनोविज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। चिकित्सा विज्ञान तनाव के प्रबंधन में रुचि दिखा रहा है। यद्यपि तनाव नितांत वैयक्तिक विषय है, कोई किसी समस्या का सामना किस तरह से करता है यह उस पर निर्भर है। तनाव का पूरी तरह मापन संभव नहीं है, फिर भी अब उसकी प्रकृति समझकर उचित समाधान के विकल्प खुले हुए हैं। तनाव अर्थ व प्रकृति। तनाव एक नकारात्मक अवधारणा कही जा सकती है। कठिन परिस्थितियों से उत्पन्न असामान्य स्थिति तनाव है। वस्तुतः तनाव एक सहज मानवीय प्रकृति है। यह जीवन में आए बदलाव, चुनौतियों और खतरनाक परिस्थितियों या खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। तनाव के कारण व्यक्ति की मनस्थिति असामान्य हो जाती है, अतः यह नकारात्मक सांवेगिक अनुभव है। तनाव में कुछ उद्दीपक कार्य करते हैं जिन्हें स्ट्रेसर्स कहते हैं। इन उद्दीपक में तनाव सहन करने की शक्ति छुपी होती है। कोई व्यक्ति किस स्थिति का सामना कैसे करेगा यह ये उद्दीपक तय करते हैं। तनाव दो प्रकार के होते हैं, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इसे सकारात्मक तनाव भी कहा जाता है। जब किसी प्रकार के तनाव से कार्य संपादित होता है या समयबद्ध करने से अच्छे परिणाम आते हैं तो इसे सकारात्मक तनाव कहते हैं। इससे अभिरुचि विकसित होती है, नए कार्य प्रारंभ होते हैं इत्यादि। डिस्ट्रेस इसे नकारात्मक तनाव कहते हैं। यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। इससे चिंता, सिरदर्द, अनिद्रा, असावधानी, चिड़चिड़ापन जैसे शारीरिक व मानसिक लक्षण अनुभूत होते हैं। यह लंबे समय तक रहता है तो इससे भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तनाव के लक्षण। मनुष्य में तनाव के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे तनाव का पता चलता है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक अवस्था से तनाव का पता चलता है। ऐसे कुछ कारण निम्न है। शारीरिक लक्षण, सिर दर्द, पीठ व गर्दन दर्द, चक्कर आना, सीने में दर्द, हृदय धड़कन में तेजी, फ्लू इत्यादि। व्यावहारिक लक्षण, क्रोध आना, एकांत में रहना, आक्रामक होना, जिम्मेदारी से भागना, घबराहट, नाखून चबाना, बेमतलब इधर उधर घूमना, ज्यादा या कम सोना। संज्ञानात्मक लक्षण, याददाश्त की कमी, भटकना, नकारात्मक दृष्टि, चिंताजनक या तेजी से बढ़ते विचार इत्यादि। हम तनाव को यदि कम करना चाहे तो उसके भी कुछ उपाय हैं। हम चाहे तो तनाव को कम करने के लिए तनाव की पहचान करें कि हमारा यह तनाव क्यों उत्पन्न हुआ और उसकी पहचान करके उसके समाधान के लिए प्रयत्नरत रहे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, अच्छा, मधुर और गहरे अर्थ वाला कर्णप्रिय संगीत सुने, अच्छी हमारी कोई स्मृति हो तो उसे याद करें, जो हमारी रुचि है जैसे पुस्तकें पढ़ना, मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ना, घूमना, खेलना इत्यादि कर सकते हैं। योग, व्यायाम, ध्यान

0: मनोरंजन भी जीवन में बहुत आवश्यक है, तो मनोरंजन से भी जीवन में एक बदलाव आता है, तनाव कम होता है और हम सभी किसी न किसी अपने आप को कार्य में व्यस्त रखे। तनाव सहनशीलता, तनाव सहनशीलता से तात्पर्य है तनाव को पहचान कर उसे दूर करने के उपाय करना। तनाव की परिस्थितियों में उपरोक्त शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक एवं संज्ञानात्मक लक्षण स्पष्ट होते हैं। तनाव के समय ऐसी विरोधी भावनाओं को पहचान कर प्रबंधन करना जिससे तनाव के समय मानसिक शांति और सुकून मिले। कठिनाई या समस्या के समय तनाव मुक्त होकर शांति का अनुभव करना सहनशीलता है। तनाव सहन करने की शक्ति कठिनाई के समय संबलन प्रदान करती है। उच्च दबाव की परिस्थितियों में तनाव का सामना कर न सिर्फ तनाव से बाहर आ सकते हैं बल्कि कुछ नया भी कर सकते हैं, क्योंकि तनाव के दिन बीतने के बाद वातावरण पूर्ववत हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। यह निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो तनाव है वही दूसरे के लिए सामान्य परिस्थिति भी हो सकती है। कोई व्यक्ति तनाव आने के बाद लंबे समय तक पीड़ित रहता है तो कोई उससे तुरंत उबर जाता है। तनाव सहनशीलता में दूसरों के प्रति नकारात्मक जैसे निराशाजनक, कटु या अमित्र हुए बिना दबाव या अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता है। तनाव सहन करने की क्षमता रखने वाले लोग उच्च दबाव वाली स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। वे प्रभावी ढंग से खुद की समस्याओं के समाधान की चुनौती का सामना करते हैं और अचानक आने वाली परेशानी को आसानी से पार कर लेते हैं। वे चिंता से शीघ्र मुक्त हो जाते हैं और उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। जीवन के उच्च लक्ष्य, विकास और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। हमारी कमियां, गुण, विचार, आदर्श, दोष, दृष्टिकोण, भावनाओं, व्यय प्रेरणा इत्यादि की समझ उत्पन्न करते हुए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक और स्व। सार्वजनिक में लोग या समाज हमारे विषय में क्या सोचते हैं, धारणा रखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उस आधार पर आत्मनिरीक्षण करना। और स्व यानी सेल्फ, हम स्वयं अपने विषय में क्या सोचते हैं, धारणा रखते हैं, कहां सुधार करना आवश्यक है, इस आधार पर निरीक्षण करना। आत्ममूल्यांकन में अपने गुण दोष की पहचान होती है। आत्ममूल्यांकन उन पहलुओं का आकलन करने के लिए स्वयं को देखने की प्रक्रिया है जो किसी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन उद्देश्यों में से एक है जो आत्म सत्यापन और आत्मवृद्धि के साथ साथ आत्ममूल्यांकन को प्रेरित करता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता और वार्ताकार थे डॉक्टर लोकेंद्र कलाल। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 होने को है। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

फिल्म सीआईडी का ये गीत आपने सुना, आवाजें आशा भोसले, महेंद्र कपूर, कमल बारोट की और गीतकार अजीज कश्मीरी, संगीतकार ओपी नैयर। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

0: हम तो तेरे आशिक हैं, ये गाना फिल्म फर्ज का आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत रचना आनंद बख्शी, संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के और अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं अगला गाना।
1: तो हुस्न

हमराज फिल्म का ये गीत आपने सुना। गायक महेंद्र कपूर आशा भोसले, गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीतकार रवि।

0: तू जाए ना दो दिल दीवाने
1: पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे।
2: हरे कांच की चूड़िया, इस फिल्म का गीत आपने सुना आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जय किशन। इसी के साथ हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।

एफएम बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है।

0: यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भोरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
4: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त

0: राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
1: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमरीका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
2: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
3: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाए।
2: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
4: मैंने जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे।
2: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
2: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश

0: देशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहनें भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की डाली स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड में भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

देखा साजन को तो चेहरा लाल हो गया, दिल ने कहा यही तो मेरा ख्याल हो गया। मेहंदी का रंग गहरा हो गया जब से साजन मेरा हो गया। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, साजन शब्द सुनते ही दिल में को एक मीठी सी हलचल होती है। साजन का अर्थ है जो जीवन को सजाए, जो दिल को सजाए और

जो घर को सजाए। हमारे साहित्य में साजन को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे प्रियतम, प्रिया, बालम आदि। लेकिन भाव एक ही है, प्रेम।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: श्रोताओं, मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, उनके लिए कृष्ण ही प्रिय थे। हीर रांझा लैला मजनू।

सबकी कहानियां साजन के प्यार पर ही तो टिकी हैं। साजन के बिना साहित्य अधूरा है। एक लड़की के जीवन में साजन का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन में वह गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, जवानी में वह अपने साजन के सपने देखती है और सोलह श्रृंगार करती है सिर्फ अपने साजन के लिए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किट बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं, साजन सिर्फ पति नहीं होता, वह हमारे परिवार का हिस्सा बनता है। वह किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का भाई और अपने सजने के लिए उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। आज के जमाने में साजन का मतलब सिर्फ पैसा या सुंदरता नहीं है। सच्चा प्रियतम वह है जो इज्जत करना जानता हो, मुश्किल में साथ देना जानता हो, परिवार को साथ रखना जानता हो और अपनी पत्नी की खुशियों की परवाह करता हो।

श्रोताओं, हमारे समाज में साजन सजनी का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है। सात फेरे सात जन्मों का बंधन है। ये बंधन सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन है। इसलिए शादियों में कहा जाता है, दो दिल नहीं, दो परिवार मिलते हैं।

श्रोताओं, साजन बिना जीवन वैसे ही है जैसे बिना खुशबू के फूल, बिना पानी के नदी। साजन जीवन में रंग भरता है, उमंग भरता है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत शिल्पा माथुर के स्वर में।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: एफएम बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी कल और परसों निकाली जाएगी और राज्य भर में जल झूलनी एकादशी परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, इसके खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पहली बार ये आयोजन दिल्ली के बाहर दूसरे राज्य में हो रहा है। समारोह में अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए चुना गया है। भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म और राम नामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार मिलेगा। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सिनेमा जगत के शीर्ष सम्मानों में गिने जाते हैं और फीचर फिल्म गैर

0: फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन सहित विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक तथा तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। जयपुर में आयोजित हो रही लोकसभा की सार्वजनिक लेखा समिति की दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आज विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। ये जानकारी समिति की वर्ष 2026-2027 की अध्ययन यात्रा के तहत ली जा रही है। कल पहले दिन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं के प्रदर्शन ऑडिट से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्य जगदम्बिका पाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विषयों पर तथ्यात्मक चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई। मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण और इनोवेशन का केंद्र बनाने की ऐतिहासिक पहल है। साल 2014 में शुरू किया गया ये कार्यक्रम अब केवल देश की जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन पर काम कर रहा है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने, इसे निवेश, निर्माण और अभिनव प्रयोगों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी 12 सालों की यात्रा पुनरुत्थान की कहानी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील उद्योग, सेमीकंडक्टर निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन निर्यात सहित कई क्षेत्रों में मेक इन इंडिया की छाप नजर आने लगी है। साथ ही नागरिकों में स्वदेशी की भावना भी सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भी बढ़ोतरी हुई है और विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत के व्यापारस्थ की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। ये पहल शुरुआत में कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित थी, वहीं मेक इन इंडिया 2.0 के तहत अब 27 से ज्यादा क्षेत्र इसमें शामिल हैं। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी कल और परसों निकाली जाएगी। नगरीय निकाय चुनावों के कारण आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पहले स्थगित कर दी गई थी। 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। ये प्रक्रिया सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी। वहीं 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी उपखंड स्तर पर SDM की निगरानी में होगी। इधर नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर तथा सुकेत नगर पालिका के सभापति पद के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 25 सितंबर को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि वन्य जीव संरक्षण की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों को साथ लेकर संरक्षण और सह अस्तित्व पर काम करना जरूरी है। कल जयपुर में विश्व प्रकृति कोष के वैश्विक संरक्षण सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री यादव ने कहा कि संरक्षण के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता संवैधानिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या करीब 750 से बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। बाघ अभयारण्यों की संख्या 47 से बढ़कर 58 और हाथी अभयारण्यों की संख्या 30 से बढ़कर 33 हुई है। इसी अवधि में रामसर स्थलों की संख्या 24 से बढ़कर 101 हो गई है। श्री यादव ने वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण, प्रजनन और उरान पवित्र उपवनों के सामुदायिक संरक्षण प्रयासों का भी उल्लेख किया। प्रदेश भर में आज

0: आज जल झूलनी एकादशी परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, भजन कीर्तन और आरती के आयोजन हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर आज ठाकुर जी के डोले निकाले जाएंगे। अजमेर में मंदिरों में सुसज्जित रेवाड़ियां निकाली जाएंगी। भगवान के विग्रह को जल विहार के लिए ले जाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। पाली में विभिन्न मंदिरों और घरों से ठाकुर जी को पालकियों में विराजमान कर सिरे घाट लाया जा रहा है, जहां बारिश के नए जल से स्नान करवाकर आरती की जा रही है। बारा में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर प्रसिद्ध 17 दिवसीय डोल मेले की आज से शुरुआत हो रही है। मेले में शोभा यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवरिया जी मंदिर में जयकारों के बीच भगवान सांवरिया सेठ के 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। दोपहर में भगवान के बाल स्वरूप को चांदी के रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में और देश की 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी कल और परसों निकाली जाएगी। और राज्य भर में जल झूलनी एकादशी परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पंकज उदास के स्वर में कुछ गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं पंकज उदास के स्वर में कुछ गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना पंकज उदास के स्वर में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा देवी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन

0: ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोता, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण, बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
1: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से।
0: खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
1: जी।
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
1: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
1: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
1: जी।
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी।
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी।
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी।
0: मैं तो यही कहूंगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य

0: पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः

राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India, brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha, for empowering education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर्मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर्मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
6: अरे उठो,
7: उठो,
6: अरे उठो,
4: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
6: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था।

0: वहाँ पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे। परियां परियां नाच रही थी। और हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह।
1: दूसरे ने कहा,
2: मैं तो सपने में गरवाल का राजा बन गया था। वो बड़ा महल था, हाथी घोड़े नौकर चाकर थे। मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
3: बाँ बाँ बाँ बाँ।
2: बगल में महारानी थी, लोग झुक झुक कर सलाम

0: बुरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोच कर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया। उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
2: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
3: तो क्या तुमने खीर खा ली? नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता?
4: तुम झूठ बोलते हो।
3: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
2: जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहां बुलाने के लिए। यहां मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता है, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है, ब्रेन में खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण

0: है बीपी बढ़ जाना,
1: ओ
0: बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी, तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा,
1: ओ
0: उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकंड सवाल पूछा, क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, आंसर इज यस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं।
1: जी
0: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का, तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है,
1: ओ
0: मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से 1 मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं।
1: जी
0: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अस्पताल ज्यादा हो रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज्यादा होते पा रहे हैं,
1: अच्छा
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट,
1: हैं।
0: अच्छी है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको, फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं
0: करेक्ट
1: बिल्कुल,
0: करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या?
0: एक ही कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्तदाब, वो कन्फर्म है बढ़ता ही है उस वक्त, तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का,
1: जी
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी,
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है,
1: जी
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ न कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है, जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा, जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं। अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है, तो उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश प्रयास किया जा सकता है।

0: ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन एमआरआई ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर में मोच आ गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है, थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस है। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो
1: जी।
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं।
1: तो
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं
1: जी। तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध।
0: खून अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए और पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है
1: जी। जी, तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखिए जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है, जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली तो वो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना।
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए। उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी,
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए हर्निया ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहां पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए। बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं।
0: पसंद का। अब मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना दो महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना दो महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, दो दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं।

0: वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन,
1: जी
0: दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर आपने जो बताया वही
1: वो
0: सही
1: सही
0: था।
1: था।
0: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि
1: जी
0: बीमारी का जो आउटकम है वो
1: हाँ
0: समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको
1: जी
0: समझाना काफी मुश्किल
1: मुश्किल
0: बोल
1: होता
0: सकता
1: है।
0: हूँ।
1: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए,
0: करेक्ट करेक्ट। तो वो जो एक
1: ये
0: मिथ है
1: जो
0: कि मेरे
1: बात है।
0: गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने
1: हाँ
0: उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए,
1: हाँ
0: तो अब
1: हाँ
0: जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं इसमें तो कुछ है नहीं,
1: जी
0: बट
1: जी
0: जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब
1: जी
0: अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूं खेल रहा हूं भाग रहा हूं, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है। अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, 2 साल
1: जी
0: 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू,
1: जी
0: दो
1: जी
0: सार एकदम सेफ दवाइयां रहती है। मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहां पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। अभी भी जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहां पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी।
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: तो
1: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयां लिख दिया उसको, आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी जी।
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी है जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है। तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी। सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है, और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से?
1: एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हुई, इसको हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से सिर दर्द।
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत है पेट की, पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो

0: दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी।
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी।
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको।
1: जी जी।
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, न कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है,
1: भाप ले लो।
0: तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं, दैट इज हाफ इन्फॉर्मेशन।
1: जी। और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है,
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूं।
1: जी। और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम, तो इसलिए सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क कर।
0: वो जो 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके।
1: जी।
0: जैसे ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है। तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना या याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं? काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल आईसीएमआर जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहा है, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब।
1: अच्छा।
0: तो अब उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम कोई लक्षण आपको लगता है दिखाई देता है तो डॉक्टर से संपर्क कर ले। और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे।
1: जी,
0: बहुत ही फेमस सॉन्ग है वो।
1: जी, सुनते हैं ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में है ये गाना।

0: आने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है? क्या
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही अच्छी चीज है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है, ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है
0: जी।
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत ये है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4 ही है। मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर 40-50 हजार के आसपास है। MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक?
1: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन
0: स्पेसिफिक मतलब वाली बीमारी।
1: करेक्ट। काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहे ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी में, वहाँ MRI छोटे आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का MRI करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? जिससे
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेज नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
0: जी तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
1: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो एमआरआई देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है। मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm, 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं। तो अगर वो मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 cm के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट

0: लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर छोटा है तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
1: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का एक 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के। महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: लोग सब फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई, हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ अचानक चक्कर आया फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना जरूरी
0: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए। बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है
1: जी।
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
1: जी, जी।
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है।
0: करेक्ट।
1: तो उसकी क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं।
1: ट्यूमर वही है।
0: तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है।
1: और फिर
0: उसके हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
0: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15-20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15-20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं? सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है,

0: किसी को नहीं पता
1: जी।
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर इतने कम है फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह की
0: स्ट्रोक? स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में संभाव कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं

0: आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन है, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर है, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूं, बीपी की दवाई खा रहा हूं, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी।
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज है नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है। तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है।
0: तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है। तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या ही होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए, जरा बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी।
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किस से हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयां बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी।
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयां भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी।
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग मॉडिफाई करना है, बट एक है कि दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट।

0: रहता है
1: जी। एक और बात हमारे जहन में आई है वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है, तो ये क्या कोई न्यूरो
0: रिलेटेड ही है? उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है, तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं, बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
2: वो है संगीतकार गायक और

0: अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

एफएम दैनिक सत्यश पुलाव 3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं फिल्म कबीर सिंह से। आवाज है अजीत सिंह की, शब्द रचना है मिथुन की, और संगीत दिया है मिथुन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश एनिमल फिल्म से गीत। स्वर हैं विशाल मिश्रा के, बोल हैं राजशेखर के और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

श्रोताओं आइए सुनते हैं तो झूठी मैं मक्कार फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में, बोल है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं बंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे

में है यार, आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से श्रेया घोषाल, गणेश, मुस्तफा अजीज, शादाब, अल्तमाश, फरीदी, फरहान और शबरी की आवाज में। बोल हैं सिद्धार्थ गरिमा के और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

श्रोताओं लीजिए सुनते हैं रामलीला फिल्म से श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में गीत। शब्द रचना है सिद्धार्थ गरिमा की और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस आर प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डिलीबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। आई एम इन्फॉर्म्ड दैट दिस ईयर एडिशन विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 35 कंट्रीज। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज।
1: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषज्ञ समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किये। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, फिल्म अमीर गरीब,

0: विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए, देश की सुरीली धड़कन, भारत का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत

0: उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर

यादों की महफिल, फिल्म का नाम डिस्को डांसर, अनजान के बोल बप्पी लहरी की तरह, पार्वती खान की आवाज।

हीरापन्ना फिल्म का गीत था और अब आरडी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हाँ चलो हो जाए। अब लड़का कहता है हम तुम पे इतना डाएंग जितना सी में पानी लाएंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा है ना इस खेल में। ऑफ कोर्स तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे। तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीले नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे, और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी।

मामा के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो निबलिए।

मराठी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं।

वही कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 79 में तो मेरा जन्म हुआ था, 80 के दशक में बच्चा था और उसके बाद उन्होंने 90s की कुछ फिल्मों को याद किया है। अर्ली 90s की करमाना की, नाराम लखन, प्यार झुकता नहीं, एक दूजे के लिए, कभी 90s की सैर भी करेंगे इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तेरे बिन मर जाना कॉलेज में तहलका मचा दिया था इस गाने ने, किसी को प्रेम का इजहार करने या छेड़ने के लिए मनपसंद गाना था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दौर में स्कूल में पढ़ रही थी, तीन खेल तब बहुत लोकप्रिय थे, कबड्डी, खो खो और छुपम छुपाई। क्या याद दिलाया, छुपम छुपाई कितने लोगों को याद है। और छुपम छुपाई में ऐसी ऐसी जगह छिप जाते थे कि कहीं मकड़ी के जाले लग जाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था, ये भी याद कीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। इस बीच में एक सुंदर खबर हमारे एक श्रोता ने भेजी है और कहते हैं कि भारत की लड़कियां आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि भारत और श्रीलंका की लड़कियों का मैच चल रहा है, T20 मैच, पहली बार बहुत सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में। और भारत ने 20 ओवर में 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और श्रीलंका 7 विकेट उड़ चुके हैं, 11वां ओवर है, केवल 54 रन है। तो कुल मिलाकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज भारत की लड़कियां जीत जाएंगी और भारत का एशियन गेम्स में इस बार का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास आ जाएगा। तो जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अब बस 9 ओवर का खेल बाकी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ही ये खेल जो है खत्म हो जाएगा और भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत जाएंगी और जब तिरंगा लहराएगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ वापस लौटते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीला सफर सुनकर दोपहर की सारी थकान मिट जाती है, हम चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सिर्फ जीवन संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम ओपिंगो बैटिंगो खेल खेला करते थे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि खुददार फिल्म एक हफ्ते में 2 बार देखी थी, पहली बार 20 मिनट निकल चुकी थी इसलिए दूसरी बार फिर देखने के लिए गए थे, तब भी 20 मिनट, यानी शुरू की 20 मिनट इनकी हर बारी छूट गई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे लड़के इस गाने को गुनगुनाया करते थे, रेडियो पर जब ये गाना बजता था तो बड़े चाव से सुना करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि वो कलकत्ता में थी, 27 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 80 के दशक में नौकरी मिली थी और 80 के दशक में के अंत में शादी हो गई थी, पिछले 25 बरस उनकी उम्र थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। आज तो भाई 80 के दशक की सैर है सुरीला सफर कार्यक्रम में और जरा देखिए कि हम कहां पहुंच गए, किन यादों में। जब ये फिल्म आई थी सनी देओल और अमृता सिंह की अभिनय वाली, तो ये गाना जैसे सभी के होठों पर सज गया था। आपकी क्या यादें हैं इस दौर से जुड़ी हुई, जरा हमारे साथ बांटिए। न जाने कितने लोगों की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी ये कहते हुए

श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे भाई, ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं, तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, ये एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोताएं जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 12-13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यादें। देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है, सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक बड़े बड़े फ्लैश लाइट

कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए पांच मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास दो दो रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है। और वो फिल्म जो है एक महीने बाद देखने को मिली थी, बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं, और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें एआई के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहां से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुगढ़ता, वो जीवन का सुकून कहां से लाएंगे जब संगीत में शोर कम और सुकून ज्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं है, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, मां के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं, ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान

क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊजी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीजें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे अपनी पसंद के गाने।

तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था। 80 का दशक अब कहां, विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज ही सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं। वो लिख रहे हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल खत्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां। विविध भारती परिवार की

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहाँ विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर ये गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहां होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी, ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गाना निदा फासली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे निदा फासली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफी, मनहर उदास और हेमलता तीन अलग अलग आवाजों में इस गाने के वर्जन है। संगीतकार उषा खन्ना है ये भी। और इसके अलावा राजबब्बर पर फिल्माया गया दीपक पराशर और रंजीता, ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियां इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता है, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहां पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज्यादा सुना है, इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था और सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, न मोबाइल न वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं। यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

भाई ये गाना भी खत्म हुआ। कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का यह अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि खुदा गवाह इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अंग्रेजी में चल सकता हूं, अंग्रेजी में हंस सकता हूं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। ये बात एक श्रोता

0: ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमकलाल लावारिस कुली मर्द शहंशाह काला पत्थर कालिया नसीब शराबी सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: हाँ, क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए। जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी

0: इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी, कितना इंतजार था लोगों को, कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

है जीनत अमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है। किसी ने लिखा

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफर पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को। कौन था, कहां से आया था, इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई। तब दिल को बड़ा अफसोस होता है। रह

हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। न नाम का बंधन, न पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।

अजनबी सी मुलाकात, वो सफर पर मिली किसी की दुआ, बस में किसी अनजान बच्चे की मासूम मुस्कान, रास्ते में सड़क पार करते समय गिरने पर किसी अनजान का सहारा, या किसी का पूछना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो हैं? और जब किसी अजनबी से मुलाकात अचानक दिल में प्यार का एहसास घोल दे, उससे बार बार मिलने को मन करे, एक रिश्ता सा जुड़ने लगे, तब वो अजनबी लगता है हमारे सुख दुख का, खुशियों को बांटकर जीवन भर साथ चलता रहे, हम सफर बनकर कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें उन्हीं से मिलती है जो कुछ देर के लिए हमारी दुनिया में आते हैं और हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है। उजाले उनकी यादों के उत्तम सिंह के साथ हर रविवार शाम 4 बजे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया।

0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म

0: नेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
2: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
1: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भोरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।

0: गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
3: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है

0: ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 बजे।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हो मुझे सर से कदम तक, सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा।

0: चाह सनम तुमको चाह के।
1: प्यार का मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार राहुल देवर्मन। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: मैं लेना
1: कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती है।
2: अच्छा।
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर
2: दिया,
1: राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं। अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले
2: कैसे
1: पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल,
2: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते हैं, पर
1: चक्कर में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
2: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है। इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोज भी नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत सारे रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
2: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सोनाली जी उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: जी साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत कहो ना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं। और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
2: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा। तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया।

0: सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा भी रहे होंगे,
1: शायद लिखेंगे।
0: हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं,
1: उन्हें अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई हुई और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया और शुरूआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का,
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

तो ममता जी आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है और टैफ भारत के प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिन।
1: जी मैंने पढ़ा है, सुना है, हाँ। और आपके बारे में भी पढ़ा है,
0: हाँ।
1: और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते हैं अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं, और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए, मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है, और एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं।
1: जी,
0: आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही ममता जी।
0: बिल्कुल, महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी

0: आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप अपने घर से तो अकेले निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं को मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है। लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुनें और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए। वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती हैं तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है। मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
0: और आप निडर बनते हैं। इसी बहाने एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहां तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही है तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही है, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है, सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है। बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए, और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं। ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे समय आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहां नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहां तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथ ही कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों की

0: साथी इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव ही हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हां, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है
0: जी,
1: तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
0: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
1: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि मैं अकेली आई हूं वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है। कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भागदौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते। आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है,
0: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते। जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते, तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
1: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सुना लीजिए हम भी सोलो ट्रिप पर, फिलहाल
0: दोनों मिलकर सोलो ट्रिप
1: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका सफर उनके लिए सुहाना हो
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और हमारा उसे उस समय टाइम उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाए, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दें। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो जो खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें हैं कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े थे और एक हम उम्र लड़का आकर बोला आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं, हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कह के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है, जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं, इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो हालत वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।

0: एक सखी ने लिखा है, आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किस्से खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा, आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ। मैंने कहा, मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ? मैंने कहा, तुम लोगों ने दो ही शब्द सीखे, अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
1: जी बिल्कुल।
0: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई काफी उम्र का हो चुका है। मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है। हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंसकर मुस्कुराकर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
1: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल है, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है। मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
0: वही दीदी, ताई, भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता है।
1: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
0: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ के। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
0: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है, कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए पर टीनएजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं,
0: अंकल कहाँ दिखा।
1: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं,
0: तो
1: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई, अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा रहे।

क्या हुआ?

Bye.

0: हसीना
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना, धक धक धक, बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से,
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा

0: अल्लाह तुम हो ओ दिलरुबा।
1: अब ये आंटी ना कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि बेंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
2: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूं तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची काकी बुआ जी मामी यही तो होता है ना।
1: बिल्कुल। अच्छा इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया, तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार में ताई मतलब चाची मतलब बड़ी माँ।

0: तरह से, मतलब जो जो चाची है
1: माँ की जेठानी,
0: हाँ माँ की जेठानी हुई, तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है? तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहां का चलन है वहां का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहां के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई

0: जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में दो गुना तीन गुना उम्र की रही होंगी और उन्होंने मुझे ताई कहा था और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा हो।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। ये जो हमने मुहावरा लिया है इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए, इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी सुनते मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोचा तो उसी के
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाई वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है घर का भेदी लंका ढाई बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे सरकार, जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओं, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बायनोक्युलर्स लिए, और उस बायनोक्युलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया।

0: और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से यह सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौक ही आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
0: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है।
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं। और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से, जब हम किंडरगार्टन में थे तो दो तीन ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय टंडुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब एडेप्टेड प्लेस हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेस का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेस नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेस हैं और गुजराती प्लेस जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म

0: उनसे या फॉरेन प्लेस से ही अडेप्टेशन है. अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है. जैसे अंग्रेजी प्लेस हैं, जो इंग्लिश प्लेस यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं. वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं. हिंदी प्लेस ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है. जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपी है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है. उसके अलावा कहां आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं. हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने. पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था. 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर. तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं. भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था. सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए. इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है. और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले. गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी.
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे.
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने.

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी। क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के, कि बस ये एक

0: रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है। चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए, शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
1: बार बार नहीं आते
0: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो तीन पीढ़ियां हैं, तीन जनरेशन्स के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त पे वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कभी स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
0: जी।
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको
1: जी।
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और

0: भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं, आपको क्या आपने मनमाफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स में थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं काम फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बनके आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: आनंद जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पिन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे। और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहां पंजाब में है और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब

0: बंबई में है।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरे टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स है उस पर हमने बनाई थी सीरियल, और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं, और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे, हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है, वो आदमी शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे, वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसा है। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई, ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है,
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाए सेट पर मेकअप लगाए और शुरू हो जाए एक्टिंग करना?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या पूरी जिम्मेदारी बोझ पर
1: डायरेक्शन के बाद? मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है, तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है, और जहां हमको एक गाना होता है वहां छह गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाएं हम?
0: जी,
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में छह छह गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर दें।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक

0: कोड भी बनता है और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कंपटीशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है। आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार, जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता, थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा,
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
0: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी और सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूं मैं बोल सकता हूं, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: हाँ, संगीत में
0: रुचि है,
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत जरूरी है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना। और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ, जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहां की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आप

0: का विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूँ।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉयड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉयड

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए

0: तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर चर्चा, खुद को समय देना भी जरूरी है इस विषय पर चर्चा, अंगदान महादान पर चर्चा, सौंदर्य प्रसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग, ब्यूटिशियन संगीता कुशवाहा से बातचीत और साथ ही आप सुनेंगे गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ी आप सुन सकते हैं 6:15 पर हमारे स्टूडियो से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे 6:30 से 7 बजे तक हमारे जयपुर केन्द्र से। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम होगा किसान वाणी 7 बजे आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से। यहीं से 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या सुन सकते हैं आप हमारे दिल्ली केन्द्र से। 10 बजे का समय रहेगा जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स का, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से रिले करेंगे। 10:20 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे और रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से। ये तो था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से। 6:05 पर चिंतन आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से। यहीं से 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना। हमारे स्टूडियो से 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। खेती में बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत 6:50 पर सुनवाए जाएंगे। 7:20 पर वातायन कार्यक्रम होगा। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे 7:30 पर सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे मुंबई केन्द्र से।

समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। सुबह 8 बजे कुछ दिल से प्रोग्राम होगा 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से सुबह 9 बजे। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर और सुबह 11 बजे हमारे स्टूडियो से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं 9:30 पर।

और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर हमारे स्टूडियो से। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात, चर्चा और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से 6:30 से। 7 बजे बैरानी बात कार्यक्रम होगा, जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर हमारे जयपुर केंद्र से। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से रात 10 बजे। 10:20 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी है शक्ति, नारी पहचान, उससे रोशन घर आंगन सारा जहान। हौसलों से लिखती अपनी नई कहानी, हर क्षेत्र में बढ़ रही आज की नारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का। तो कीजिए स्वीकार आपकी दोस्त प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। बोलो सजना सरोना हर किसी को पसंद होता है। सौंदर्य को निखारने के लिए हम कई बार ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो हमारे लिए कई बार नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आज की हमारी बातचीत इसी विषय पर आधारित है, सौंदर्य प्रसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग। इस विषय पर बात की है ब्यूटिशियन संगीता कुशवाहा से। तो आइए सुनते हैं बातचीत। करेंगे एक ऐसे विषय की जिसका संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और व्यक्तिगत देखभाल से है, सौंदर्य प्रसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है संगीता कुशवाहा, जो कि एक ब्यूटिशियन है और गत 15 वर्षों से अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्ते प्रीति जी।
0: संगीता जी, सबसे पहले यह बताइए कि सौंदर्य प्रसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना क्यों जरूरी है?
1: देखिए प्रीति जी, सौंदर्य प्रसाधन हर व्यक्ति की खूबसूरती के लिए जरूरी होता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट हर किसी के चेहरे के लिए नहीं होते हैं। हर किसी का स्किन अलग अलग होती है और इसमें हमें किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले हमें स्किन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, वरना कई तरह की एलर्जी हो सकती है, जैसे पिंपल, इचिंग, रेशेस और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए विज्ञापन को देखकर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने फेस पे नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक संगीता जी। अब आगे ये बताइए कि कॉस्मेटिक खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए प्रीति जी, कॉस्मेटिक खरीदते समय हमें सबसे पहले तो कप की बनी हुई है और इसके अंदर कौन कौन से सामग्री मिला हुआ होता है और कितनी मात्रा में, सबसे जरूरी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना प्रोडक्ट

0: कलर और स्मेल चेंज हो सकते हैं और इस्तेमाल करने जैसा नहीं रह जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट लेते समय हमें हमारे स्किन और हेयर का ध्यान में रखते हुए लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि नेचुरल हर्बल या ऑर्गेनिक है लिखा हुआ है तो ले ले, ऐसा हर व्यक्ति के लिए सेफ्टी नहीं होता है।
1: अब क्या किसी नए कॉस्मेटिक को सीधे चेहरे पर हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमेशा नए प्रोडक्ट का पेच टेस्ट करना जरूरी होता है। अपने कान के पीछे या एल्बो पर अगर किसी भी तरह की रेडनेस या इचिंग होती है तो यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली कॉम्बिनेशन स्किन वालों के चेहरे पे। इस्तेमाल करने से पहले हमेशा विशेषज्ञों की राय ले लेनी चाहिए, अन्यथा इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
1: मेकअप उत्पादों के इस्तेमाल में किन किन सावधानियों की जरूरत होती है?
0: सबसे पहले तो अपना हैंड अच्छे से वॉश होना चाहिए। किसी भी मेकअप करने से पहले अपना ब्यूटी ब्लेंडर, स्पंज, ब्रशेस क्लीन होना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्लाइंट का फेस हमेशा मेकअप करने से पहले क्लीन करना चाहिए, स्पेशली आईज के नीचे। और उसके बाद हमें प्राइमर या किसी मॉइस्चराइजर का प्रयोग करने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। और हाँ, नाइट में सोने से पहले हमेशा अपना मेकअप क्लीन करने के बाद ही सोए। इस तरह से आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा, हमें ये सावधानी तो रखना बहुत ही जरूरी है। कोई व्यक्ति हेयर कलर या अन्य रासायनिक उत्पादनों का जो उपयोग करते हैं तो उसके बारे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: जी प्रीति जी, हेयर कलर में कई तरह का केमिकल आता है। बालों में इस्तेमाल करने से पहले हमेशा एलर्जी टेस्ट करना जरूरी होता है और समय का ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी होता है। कलर लगाते वक्त अगर किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा जलन या इचिंग होती है तो तुरंत हटा दें और किसी विशेषज्ञ की राय से ही कलर करना चाहिए।
1: आपके अनुसार क्या प्राकृतिक या घरेलू सौंदर्य उत्पाद हमेशा सुरक्षित होते हैं?
0: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मानना सही नहीं होगा। ये नेचुरल होममेड चीजें हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। खासकर दही, नींबू, मीठा सोडा सीधे त्वचा पर लगाने से रिएक्शन हो सकता है और कई प्रकार की एलर्जी भी हो सकती है। हर किसी का पीएच लेवल हर स्किन का अलग अलग होता है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को देख के कभी भी होममेड प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए।
1: अंत में संगीता जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, सुंदर दिखना हर किसी का हक है, लड़का हो या लड़की या महिला, लेकिन स्किन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी कॉस्मेटिक को खरीदते समय लेवल, एक्सपायरी डेट और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है वो सारी चीजें चेक करके ही खरीदना चाहिए। सेम प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है और स्किन हर किसी का अलग अलग होता है, इसलिए हमेशा यूज करने से पहले अपनी स्किन के बारे में भी जानना जरूरी होता है। और चेहरा तथा अपने स्किन को क्लीन करते रहे और किसी भी तरह का एलर्जी से परेशान हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमें यही पता चलता है कि सौंदर्य प्रसाधन हमारी खूबसूरती निखारने के लिए है, लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा समझदारी और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो संगीता जी, आपने हमारे श्रोताओं को सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने हमको मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोनों, अभी आपने सौंदर्य प्रसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग के ऊपर बातचीत सुनी संगीता कुशवाहा से। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं बात प्यारा सा गीत।

0: इतनी रात में SMS KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक

0: खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिर से स्वागत है दोनों आपका कार्यक्रम में। अब हमारा अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। यह प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि कल है। इस दिवस का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बधिर एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के अधिकारों तथा समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम ऐसा वातावरण बनाए जहां संचार किसी के लिए भी बाधा न बने और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और समझे जाने का समान अवसर मिले। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, खुद को समय देना भी है जरूरी। फिर हम अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की जरूरतों को पूरा करते करते कई बार खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। खासकर महिलाएं, उनका सारा दिन या यूं कहे कि सारी उम्र परिवार और दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने में ही बीत जाती है। उसे याद ही नहीं रहता है कि उसके भी कुछ शौक थे, ख्वाब थे, उम्मीदें थी, जो शायद परिवार के बोझ तले दब जाती है। जब उसे एहसास होता है तो उम्र के वो उस पड़ाव पर आ जाती है, शायद यहाँ से फिर शुरू करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई महिलाएं शादी से पहले अच्छे संगीतज्ञ, आर्टिस्ट, एथलीट, कवयित्री और न जाने क्या क्या होती है, लेकिन ये सारी काबिलियत और शौक जिम्मेदारियों के तले दब से जाते हैं। तो दोनों, अब अपने शौक और हुनर को दबाए नहीं, खुद को समय देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और मन को संतुलित रखने की जरूरत है। तो दिन में कुछ पल अपने पसंदीदा काम के लिए जरूर निकाले, चाहे वो किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना, टहलना या बस शांत बैठकर खुद से बात करना ही क्यों न हो। इसके अलावा अपने शौक को जिंदा जरूर रखिए। अपने मन की थकान को समझना और जरूरत पड़ने पर आराम करना भी जरूरी है, क्योंकि जब खुद का ख्याल रखते हैं, खुद प्रसन्न रहते हैं, तभी दूसरों के लिए भी बेहतर तरीके से हम उपलब्ध रह पाते हैं। इसलिए रोज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए जरूर निकाले। तो ये तो थी चर्चा। फिर से चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इतनी रात में SMS KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिर से स्वागत है मेरे आपका कार्यक्रम में। हमारा विषय है अंगदान महादान। अंगदान एक ऐसा महान संकल्प है जिसके माध्यम से हमारे जाने के बाद भी किसी जरूरतमंद को जीवन की नई उम्मीद मिल सकती है। हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े और अंगों का दान कई लोगों के जीवन को बचाने या बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। नेत्रदान से किसी व्यक्ति के जीवन में रोशनी उठ सकती है। अंगदान का निर्णय केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर बात करें और अपनी इच्छा उन्हें बताएं। साथ ही अंगदान से जुड़ी सही जानकारी केवल अधिकृत चिकित्सा संस्थानों और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से ही ले। हमारे एक छोटा सा संकल्प किसी अनजान परिवार के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। अंगदान करें, जीवन की उम्मीद जगाएं, जीते जी जागरूकता फैलाएं और मानवता की मिसाल बने, क्योंकि सच ही कहा गया है कि अंगदान महादान। यह तभी चर्चा फिर से चलते हैं, ये संगीत की ओर सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

रेडियो कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। 5:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एश किंग और क्लिंटन की आवाजों में बॉडीगार्ड फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं शबीर अहमद और नीलेश मिश्रा। हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है इसका।

अब आपको सुनवा रहे हैं नीलेश मिश्रा का लिखा और एमएम क्रीम का संगीतबद्ध किया गाना। श्रेया घोषाल ने गाया इसे। फिल्म का नाम जिस्म।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो दिन बहार आई बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा और जतिन ललित का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है यस बॉस।

अगला गाना हमने लिया है चांदनी फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिव हरी। आवाजें हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहाँ सतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवी और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। NPCI ने कहा कि MDR केवल 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। NPCI ने कहा कि 2000 रूपये तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर MDR शून्य है और इसलिए GST का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में सलामी फिल्म का गाना। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के

0: मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में सड़क फिल्म का गाना, समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए पैपॉन और सुनिधि चौहान की आवाजों में बर्फी फिल्म का गाना। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
0: जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए
1: 9414066730।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। वैदिक काल में यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचालक था, परंतु इस काल में अनेक बुराइयां एवं कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई हैं। इन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप हमारे देश में बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जो कि हमारे समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के लिए घोर अभिशाप है। बाल विवाह यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना। बाल विवाह करने से उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के साथ साथ खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आ जाता है। इसलिए हमारे देश के कानून में लड़के और लड़कियों की शादी के लिए एक निश्चित उम्र तय कर दी गई है। बाल विवाह की बुराइयों को देखकर समय समय पर समाज सुधारकों ने जन जागरण के उपाय किए और उसके साथ साथ भारत सरकार ने इस संबंध में कठोर कानून बनाए हैं और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़कों की उम्र 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनी निषेध कर रखा है। फिर भी बाल विवाह निरंतर हो ही रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी अनिवार्य हो गया है। बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 की गई। इतने कड़े और सख्त नियम निकालने के बावजूद भी आज भी समाज में आंखों में पट्टी बांधकर इस काम को धड़ल्ले से किया जाता है, जिसके कारण हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिप्राय है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
2: रिया बेटी, जरा दाल में छौंक लगा दे, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ, तेरे पापा आते ही होंगे।
3: ठीक है माँ।
4: रिया
3: आई पापा।
4: शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश।
2: अच्छा जी, मुझे कोई शाबाशी नहीं, मैं भी तो रसोई में काम कर रही हूँ।
4: अरे नहीं रिया की माँ, मैं तो इसे शाबाशी किसी और काम के लिए दे रहा हूँ।
2: किसी और काम के लिए?
4: हाँ ये लो।
2: इतने सारे पैसे?
4: हाँ रिया की माँ, पूरे 1500 रुपए हैं और ये सब अपनी रिया की वजह से हैं।
2: मैं समझी नहीं।
4: अरे भाई, इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब रिया ने ही तैयार किया था और लाला जी भी हैरान थे, कह रहे थे अरे रिया के पापा, तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है।
2: पापा, और ये गुड़िया?
4: गुड़िया ये तुम्हारे लिए और ये कमीज सोनू के लिए। अरे भाई, सोनू कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है।
2: सोनू सो गया है, चलिए आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
5: आ गया बेटा।
2: देखो ना दादी, मेरी गुड़िया बिल्कुल दुल्हन लग रही है।
5: हाँ हाँ देखी है, तू भी अपनी शादी में बिल्कुल ऐसी ही लगेगी, 1-2 साल में एक अच्छा लड़का ढूंढ के।
4: अरे माँ, मुझे जेल नहीं जाना है।
5: अरे जेल जाए तुम्हारे दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहा है?
4: माँ, 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी करना कानूनी अपराध माना जाता है।
2: हाँ माँ, और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी गैर कानूनी है।
5: अरे हमारे जमाने में तो लड़की की शादी 10-12 साल की उम्र में कर देते थे और 14-15 साल की उम्र में तो उसकी गोद भर जाती थी।
2: माँ, ऐसी छोटी सी उम्र में तो लड़की खुद बच्ची होती है, वो भला क्या बच्चा पैदा करेगी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ ना शरीर से शादी के लायक होती हैं और ना ही समझ से।
5: कह तो

0: तू भी ठीक रही है बहू? अच्छा भाई, मैं तो चली सोने।
1: ठीक है माँ।
2: अरे मजा आ गया, आज खाना बहुत स्वाद बना है।
1: पापा।
2: हाँ बेटा।
1: पापा, क्या यह सच है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल हो सकती है?
2: हाँ बेटा, सच है। और हाँ रिया की माँ, आज मुझे भोला भी मिला था।
3: अच्छा, वो भोला जिससे कुछ सालों पहले जेल हुई थी?
2: अरे उसे किसी झूठे आरोप में पकड़वा दिया था।
3: तो क्या कह रहा था भोला?
2: अपनी बेटी सीमा की शादी का न्योता दे रहा था और कह रहा था कि पास ही के गांव का कोई लड़का है 20 साल का।
1: पापा, इसका मतलब भोला चाचा को फिर से जेल जाना पड़ेगा?
2: क्यों?
1: अभी अभी तो आपने दादी से कहा था कि 18 साल से पहले शादी की तो, लेकिन सीमा दीदी तो अभी 15 साल की भी नहीं हुई।
3: तुम्हें ये सब कैसे पता रिया? क्या सीमा तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है क्या?
1: नहीं माँ, सीमा दीदी तो आज तक स्कूल ही नहीं गई।
2: है?
1: रामू की बहन और सीमा दीदी का जन्म एक ही दिन हुआ था। रामू ने ही पूरी क्लास को यह बात बताई थी कि अगले महीने वो 15 साल की ही होगी, तो उस हिसाब से सीमा दीदी भी अगले महीने 15 साल की पूरी होगी, तो अभी उसकी उम्र 15 साल से कम हुई ना?
2: हाँ, इसका मतलब भोला मुश्किल में पड़ सकता है। चलो भाई, मैं तो चला सोने।
3: बेटा रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी।
1: हाँ माँ, मैं तैयार हो गई।
3: अरे पिंकी, आज स्कूल में कितना मजा आया था ना? अरे सीमा दीदी, आप?
4: अरे रिया, स्कूल से आ रही हो?
1: हाँ दीदी।
4: स्कूल में मजा आता होगा ना? कितना कुछ सीखने को मिलता होगा।
1: हाँ दीदी। दीदी, एक बात पूछूं?
4: हाँ हाँ रिया, पूछो।
1: दीदी, आप भोला चाचा जी से कितना प्यार करती हैं?
4: हाँ, तुमने ऐसा क्यों पूछा रिया?
1: दीदी, अगर भोला चाचा फिर से जेल चले गए तो?
4: रिया, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो?
1: मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कल मेरे पापा ने सब बताया है कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
4: ओहो, ऐसा भी होता है क्या?
1: हाँ दीदी, मैंने स्कूल में अपनी मैम से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा। सच में दीदी?
2: अरे भाई, सीमा तो चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई और रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई।
5: अरे आ गई बेटा सीमा।
4: बाबा, मैं ये शादी नहीं करूँगी।
6: क्या, शादी नहीं करेगी?
4: हाँ माँ बाबा, मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से जेल जाना पड़े।
5: जेल? ये क्या कह रही है तुम?
1: चाचा, सीमा दीदी ठीक कह रही है।
6: रिया, ये क्या कह रही हो तुम?
1: हाँ चाची, मेरे स्कूल में मैम ने बताया कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 साल से पहले करने पर उनके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
5: भोला, ओ भोला।
6: हे भगवान, ये तो रामलाल जी की आवाज है।
7: अरे भोला, कहाँ हो?
5: अरे समधी जी, आप सब ठीक तो है?
7: अरे भाई, ठीक तो तब होगा ना जब तू हमें 50,000 रुपए देगा।
5: 50,000? लेकिन बात तो 20,000 की हुई थी।
7: हाँ हाँ, बात तो 20,000 की हुई थी, लेकिन हमें 50,000 रुपए चाहिए, साथ में गहने और गाड़ी भी चाहिए।
1: अरे सीमा दीदी, ये तो दहेज मांग रहे हैं।
7: अरे भाई, ये किसकी लड़की है? बड़ी बदतमीज है।
5: अरे बदतमीज नहीं, रिया बिटिया तो सही कह रही है।
7: अजी कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो आप?
5: एकदम सही बात कर रहा हूँ रामलाल जी। जाओ, मुझे नहीं करनी है अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे लालची आदमी के बेटे के साथ।
7: अच्छा, ठहर जाओ, मैं अभी पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखाता हूँ और शादी तोड़ता हूँ।
5: अरे जाओ लिखवा दो रिपोर्ट, तुम्हें भी जेल में डाल देगी पुलिस। 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी कानूनी अपराध है, समझे?
7: अरे अरे, तुम्हें ये बातें कैसे पता? ना तो तू पढ़ा लिखा है, ना तेरी सीमा पढ़ी लिखी है, फिर भी तुझे कैसे पता?
5: मेरी सीमा नहीं लिखी पढ़ी, लेकिन रिया तो पढ़ी लिखी है। बोलो रामलाल, अब क्या करना है? बुलाऊं पुलिस?
7: ना बाबा ना।
5: भाग गया लालची। रिया बेटी, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है।
6: अरे अब तो हम अपनी सीमा बिटिया की शादी उसके 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे।
8: बिल्कुल सही कहा आपने भोला भैया और कांता दीदी, जरा सीमा की तरफ तो देखिए, अभी तो उसका बचपन भी नहीं गया और अभी इसका शरीर और इसका मन दोनों शादी के लिए

0: तैयार नहीं है।
1: जी मैडम जी, और ऐसा करना कानूनी जुर्म भी है।
0: हाँ ठीक कहा आपने, और अब तो स्कूल जाना और पढ़ना लिखना हर बच्चे का अधिकार भी है।
2: हमें माफ कर दीजिए मैडम जी। धन्यवाद मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी।
0: धन्यवाद मेरा नहीं, कांता बहन रिया का कीजिए। उसी ने मुझे बताया कि सीमा इतनी परेशान क्यों थी।
1: बहुत समझदार है अपनी रिया। भाई वाह, मान गए अपनी रिया को।
0: किसी ने खूब ही कहा, लाड प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी ना तोड़ो, मुझे डाल से अभी ना तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी ना जोड़ो।

तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आज के नाटक के द्वारा हमारे समाज में होने वाली बाल विवाह कुप्रथा के कारण आज हमारे आंतरिक जीवन की आंखों को खोल दिया है और इस नाटक के माध्यम से हमने सीखा है कि किस प्रकार से रिया के सूझबूझ और शिक्षित होने से उसने सिर्फ अपने पड़ोसी सीमा को ही जागरूक नहीं बल्कि उसके माता पिता की आंखों में पड़े हुए पर्दे को हटा दिया और सीमा का बाल विवाह होने से बचाया। और श्रोताओं, इतना ही नहीं बल्कि साथ ही दहेज के लोभियों को भी सबक सिखाया। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि बाल विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के क्षति नहीं बल्कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। इस बाल विवाह को करना या करवाना संशय और गैर जमानती अपराध है। जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्रियों का बाल विवाह कराते हैं तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपए दंड देने का प्रावधान है। इसलिए आइए और अपने समाज में होने वाली कुप्रथाओं का घोर विरोध करके उन्हें जागरूक करें और अपने समाज को अच्छा समाज बनाएं। और इस विषय में आपके क्या विचार हैं हमें अवश्य बताएं।

0: श्रोताओं, आपको हमारा ये नाटक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
0: जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए
1: 9414066730।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नारी पीढ़ियां ये प्रायोजित कार्यक्रम भी आप सुन रहे थे। FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का नहीं चैनल है। 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, यहीं से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 नगरीय निकायों को छोड़कर प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता हटाई। नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह की नई दिल्ली में शुरुआत, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर। प्रदेश में इस साल मॉनसून थोड़ा कमजोर रहा, सामान्य से करीब 16% कम बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 नगरीय निकायों को छोड़कर प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता हटा दी है। कुल 309 नगरीय निकायों में से 304 नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता समाप्त करने की घोषणा की गई है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम, सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव 25 और 26 सितंबर को होंगे। वहीं खाटूश्याम नगर पालिका में भी आदर्श आचार संहिता रहेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुए हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत और खाटूश्याम नगर पालिका के अलावा सभी स्थानों से आचार संहिता हटा दी गई है। इस बीच प्रदेश के 303 नगरीय निकायों में आज उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव और मतदान की प्रक्रिया हुई। भरतपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर नगर निगमों में उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में पाली को छोड़कर सभी स्थानों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया। बीकानेर में भाजपा के पंकज गहलोत, उदयपुर में दिनेश भट्ट, भीलवाड़ा में राधेश्याम सोमानी, अलवर में अजय पूनिया, भरतपुर में अंबिका सैनी और अजमेर में हेमंत सांखला विजयी हुए। पाली में कांग्रेस के महबूब टी ने जीत हासिल की। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए कल और परसों आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
1: भारत में जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का सम्मान हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी जरूरी है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का एक लेख साझा किया। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आज नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़ान योजना के अगले चरण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में हुए इस समारोह में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय

0: स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक डॉ जोगाराम ने प्रदेश में एचपीवी और एमआर टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में टीकाकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिलों में अभियान को तेज करने और कम से कम 80% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। वहीं 31 अक्टूबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के साथ ही उसकी ऑनलाइन एंट्री भी समय पर होना जरूरी है। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के सभी 361 ब्लॉकों में टीबी मुक्त भारत टीमें बना दी गई हैं। इनमें माय भारत वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स जुड़े हैं। ये युवा अपने अपने क्षेत्र के लोगों को टीबी के लक्षणों, जांच और समय पर इलाज करवाने के बारे में जागरूक करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म भ्रम युगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में इस पुरस्कार समारोह का आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे।
0: प्रदेश में चल रहे विकसित भारत जनसेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। आयोजना विभाग के शासन सचिव डॉ रवि कुमार सूरपुर ने बताया कि 17 सितंबर से शुरू हुए और 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के समयबद्ध संचालन और निगरानी के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आयोजना विभाग को अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है। प्रदेश में इस साल मॉनसून का असर थोड़ा कमजोर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मॉनसून की विदाई हो गई है। बीकानेर संभाग के सभी जिलों के साथ झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले के कुछ भागों से भी मॉनसून विदा हो गया है। मॉनसून की विदाई के कल से शुरू हुए दूसरे चरण के साथ ही अधिकतर इलाकों में मॉनसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में मॉनसून विदाई का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है। 1 जून से 21 सितंबर तक राज्य में सामान्य से करीब 16% कम बारिश हुई है। डीग, धौलपुर, सलूम्बर जिलों में भी सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है। वहीं 23 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर सहित 15 जिले सामान्य से कम बारिश वाले रहे हैं। प्रदेश के जल स्रोतों में कुल क्षमता का 62% पानी भरा है। सबसे अधिक कोटा और बांसवाड़ा क्षेत्र के बांध लगभग 98% भरे हुए हैं। वहीं छोटे बड़े कुल 693 बांधों में से 395 आंशिक रूप से भरे हुए हैं और 95 बांध लबालब हैं। इस बीच आज अधिकतर स्थानों पर गर्मी और उमस का असर रहा। सरहदी जिले जैसलमेर में दिन का पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बाड़मेर में भी गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। पाली जिले में भी मॉनसून के दौरान कम बारिश होने से बांधों में जल स्तर कम है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता मनीष माथुर ने बताया कि आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है।

0: संविधान में आज की तारीख में लगभग 1528 एमसीएमसी के कानून उपलब्ध है और इसको हम ज्यादा से ज्यादा लंबा चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही हम जिले में जो दूसरे बांध है, चाहे कुछ दिन पहले काम में लिए हैं या फर्स्ट टाइम काम में लेंगे, उन सबकी भी संभावना हमने तलाश कर ली है, जिसमें बानियाबाग बांध है, गर्मी, कंतालिया, सरदार सम्मान, सारे बांधों की हमने तलाश कर ली है। इसके बांधों के अलावा हमने माइंस भी देखी है, जो हमने 2021-22 की कंटीन्यूसी में काम में ली थी। तो जो भी सरफेस वाटर अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करके हम पाली की जनता को पानी पिला सकेंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं।
1: बारां जिले में आज एक सड़क हादसे में डॉक्टर दंपत्ति सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना कवाई क्षेत्र में ट्रक और कार के बीच टक्कर से हुई, जिसमें मांडलगढ़ पीएमओ और उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन खेलों में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। आज खेले गए फाइनल मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौके की तूफानी पारी के साथ 79 रनों का योगदान दिया। वहीं ऋचा घोष ने 45 रनों की मदद से भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 69 रनों पर ही ढेर हो गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस सफलता पर भारतीय महिला टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि टीम के शानदार खेल प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। एशियन गेम्स में भारत ने विभिन्न स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 मेडल हासिल किए हैं। समूचे प्रदेश में जलझूलनी एकादशी के अवसर पर आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली गईं। चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया जी में निकाली गई शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। उधर राजसमंद जिले के प्रसिद्ध चारभुजा धाम में ठाकुर जी को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 नगरीय निकायों को छोड़कर प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता हटाई। नवी भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह की नई दिल्ली में शुरुआत, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर। प्रदेश में इस साल मॉनसून थोड़ा कमजोर रहा, सामान्य से करीब 16% कम बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। जिले में नगर निकाय चुनाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पोषण और पेयजल से जुड़ी गतिविधियां हुई। स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विधिक जागरूकता, विज्ञान मेले और किशोरी शैक्षिक मेले आयोजित हुए। वहीं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी कार्यक्रम रखे गए। जिले में जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा की गई। गणेश चतुर्थी और तेजादशमी पर्व पर भी जिले भर में उल्लास का माहौल रहा। झालावाड़ नगर परिषद के सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश गुर्जर को जीत हासिल हुई है। श्री गुर्जर को 30 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के राजकुमार सोनी को 15 वोट हासिल हुए। इस पर राजेश गुर्जर को 15 मतों से विजयी घोषित किया गया। जिले के 8 नगरीय निकायों में 4 में कांग्रेस और 4 में भाजपा को जीत मिली है। झालावाड़ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन संबंधी बैठक हुई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेयजल योजनाओं, घरेलू नल कनेक्शन, जल गुणवत्ता और योजनाओं के रखरखाव की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पूरी हो चुकी योजनाओं से नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और रुके हुए काम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता संबंधी कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। जिले के किसानों के लिए एग्री क्लिनिक शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बस स्टैंड के पास कृषि विस्तार कार्यालय परिसर में कार्यालय तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने एग्री क्लिनिक के लिए 3 पद मंजूर किए हैं। इसके माध्यम से किसानों को फसलों में रोग और कीट की पहचान तथा रोकथाम के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी मिल सकेगी। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में युवा मानसिक

0: तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 105 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को तनाव और भावनात्मक बदलावों के बारे में बताया गया। उन्हें अपनी परेशानी परिवार, दोस्तों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने के लिए कहा गया। जरूरत होने पर समय पर मदद लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में रोज शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और योग करने तथा नशे से दूर रहने के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ में 9वीं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक भोजन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 30 लाभार्थी महिलाएं और 1 से 5 वर्ष की उम्र के करीब 20 बच्चे शामिल हुए। आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन विषय पर भी जानकारी दी गई। महिलाओं को अनाज, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फल भोजन में शामिल करने के बारे में बताया गया। घाटौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं को शिक्षा और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दी गई। अकलेरा रेलवे स्टेशन पर टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना टिकट या गलत टिकट से यात्रा कर रहे 49 यात्रियों को पकड़ा गया। इनसे कुल 34,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय गुराड़िया जोगा में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों से 317 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने विज्ञान और नवाचार से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। मेले में विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्न मंच, प्रयोग और पत्र वाचन जैसी गतिविधियां हुई। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन मॉडल, प्रयोग प्रस्तुति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा विषय की समझ के आधार पर किया गया। समरोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 70वीं जिला स्तरीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 23 सितंबर तक चलेगी। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों की 37 टीमें भाग ले रही हैं। 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र हैंडबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, लॉन टेनिस और मल्लखंब में हिस्सा ले रहे हैं। तेजादशमी के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर लोक देवता तेजाजी महाराज की थानक पर श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने तेजाजी महाराज के दर्शन किए और भोग लगाया। वहीं गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की विशेष आराधना की गई। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग 5 नगरीय निकाय रे अलावा प्रदेश का दूजा हलका में चुनाव आदर्श आचार संहिता हटाई। नवो भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह नई दिल्ली में शुरू हुयो। पानी ने बुद्धिमानी सागे काम लेवण माथे जोर। प्रदेश में इस साल चौमासारी बिरखा थोड़ी कम रही, सामान्य करीब 16% कम में बरसियो। और एशियाई खेला में भारत री महिला क्रिकेट टीम T20 मुकाबला में श्रीलंका ने हरार सोना रो तमगो जीत्यो। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का 5 नगरीय निकाय रे अलावा बाकी हलका में चुनाव आदर्श आचार संहिता रा प्रावधान फिलहाल खत्म करन रो ऐलान कर दिनो है। 41 जिला रा 304 नगरीय निकाय हलका में जठे चुनाव रो काम पूरो हो गयो है, वठे तुरंत चुनाव आदर्श आचार संहिता हटा दी रिची है। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर में खबर नवी संसागे बातचीत करता थका कहो के प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव शांति सागे सुव्यवस्थित तरीका पूरा फेंकिया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत और खाटू श्याम नगर पालिका के अलावा सभी ठोड़ों चुनाव आदर्श आचार संहिता हटा दी रिची है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा इन बाबत हुक्म जारी कर दिना है। इविचे प्रदेश का 303 नगरीय निकाय में आज उपाध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव और मतदान हुयो। भरतपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर नगर निगम में उप महापौर ओहदा सारू फिया चुनाव में भाजपा जीत हासिल की। बीकानेर में भाजपा रा पंकज गहलोत, उदयपुर में दिनेश भट्ट, भीलवाड़ा में राधेश्याम सोमानी, अलवर में

0: अजय पुनिया, भरतपुर माए अंबिका सैनी, राजमेर माए हेमंत सांखला जीत्या। दूजगानी पाली माए कांग्रेस रा महबूब टीप जीत हासिल कीनी। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका माए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ओहदा माथा चुनाव 25 और 26 सितंबर न फैला। इन विजय पंचायती राज संस्थाओं चुनाव सारू काल और 24 सितंबर न आरक्षण री लॉटरी निकाली चावेला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 रो उद्घाटन कीनो। इ मौके वे कहो कि पानी जुड़ी चुनौतियां रो हल कोई संस्था, हलको या एकलो राज्य नहीं कर सके है। उपराष्ट्रपति पानी का प्रबंधन सारू मिलिया जुलिया नजरिया री जरूरत माथे जोर दीनो। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल कहो कि सरकार देश का हर रहवासी ने साफ और जरूरी तादाद में पीवन रो पानी मुहैया कराने को यकीनो है। वे कहो कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 री नींव है।
1: भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी की हिफाजत री भी जिम्मेदारी बताता था का मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जन भागीदारी में जरूरी बताया है। वह आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल रो एक लेख साझा कीनो। राजस्थान समेत न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेश आज नागर विमानन मंत्रालय सागे उड़ान योजना रा अगला दौर सारू करार मथे सही कीनी। नई दिल्ली में राखी जया इंजलसा में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू कहो के उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क ने बढ़ावो देवन में खास काम कीनो है। प्रदेश रा सगला 361 ब्लॉक में टीबी मुक्त भारत टीमा बना दी रिची है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आठ टीमा में माय भारत वॉलेंटियर्स और एनसीसी रा कैडेट जुड़िया है, जो आप रा हल्का माय टीबी रा लक्षणा जांच और टीम सर इलाज करावन रा बारा माय जानकारी देवेला। वे कहो कि टीबी री बीमारी ने जड़ों खत्म करन री सगड़ा री भेली जिम्मेदारी है। दूजिकानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा राज्य निदेशक डॉक्टर जोगाराम प्रदेश माय एचपीवी और एमआर टीका लगावन रा अभियान माय तेजी लावन रा हुक्म दीना है। राज्य में टीका लगावन रा काम रो जायजो लेता थका वह 31 अक्टूबर ताई 100% कामयाबी हासिल करन सारू असरदार कार्य योजना सागे काम करन बाबत कहो। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात रा एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देर प्रतिभावान नवासी। फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा लेखन समेत न्यारी न्यारी श्रेणियां में सूचना और प्रसारण मंत्रालय री ओर आ इनामों रो ऐलान करियो चावे है। आला दर्जा रा फिल्म अभिनेता अनंत नाग ने साल 2024 रा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नवासी चिया। आर्टिकल 370 फिल्म ने बेहतरीन फीचर फिल्म चुनी ची। इन्हीं फिल्म सारू यामी गौतम ने बेहतरीन अभिनेत्री रा खिताब नवाजी ची। मलयालम फिल्म ब्रह्म युगम सारू ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन सारू कार्तिक आर्यन ने बेहतरीन अभिनेता रा इनाम नवाजी चिया। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्र वीर सावरकर सारू सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुनी चिया। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अहमदाबाद में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम अब देश में सैर सपाटा री खास खास ठोड़ा रख्या चावेला। वह कहो कि एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्मी दुनिया री खास हस्तियां री मौजूदगी में वो पुरस्कार समारोह रख्यो जावणो देश में सैर सपाटा री ठोड़ा ने दुनिया में पहचान मिलेला।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है

0: उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे, हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: अरे मौसम, प्रदेश में इस साल चौमासारी बिरखा कमजोर रही। मौसम विभाग रे मुजब आखा बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलारा कुछ हलका समेत राज्य रा कई हलका माए ई चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुएगी है। 1 जून नु काल ताई प्रदेश माए सामान्य करीब 16% कम में बरसियो। केवल डीग, धौलपुर और सलुम्बर जिला माए सामान्य बत्तो पानी बरसियो। 23 जिला माए सामान्य, जदकर जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर समेत 15 जिला माए सामान्य कम बिरखा भी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: मैली धोती खुली छकाया, करे जो मेहनत कदी लालच में न आया। मैं टूटी झोपड़ी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाला सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो नहीं हो रहे मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने ढोगर जैसा, और राजू भाई आपने भी घने मानो राम राम सा।
8: राम राम सा, और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला किसान भाई बहना ने राजू को राम राम सा।
7: राजू भाई,
8: हाँ
7: जी। कुछ दिन पहले तो आपा जन्माष्टमी मनाया
8: जी,
7: और आज भी अतरी भीड़ गैला में जब मैं आ रही मैं देखी भाई आज काई है, फिर मैंने याद आई क्योंकि हमारे खुद के भी व्रत है कि आज तो जल झूलनी एकादशी छे।
8: बिल्कुल सा, और देखो इन परिवर्तनी एकादशी और ढोल ग्यारस भी कहवा, क्योंकि कई स्थान पर जो अपना ठाकुर जी है भगवान कृष्ण भगवान है, जन देखो गांव का जो मुख्य जो तालाब रेवे बर या नदी रेवे तो बम स्नान करा ले जाओ, ढोल नगाड़ा बजाता हुआ जावे और बन झुलावे भी है, इसलिए बन जल झूलनी ग्यारस को नाम पड़े।
7: कहवे है ढोल ग्यारस में ढोल निकाले मतलब पालकी में ठाकुर जी ने नगर भ्रमण करावे है, और जब मैं भी छोटा है ना तो टावर पड़ा में सागला टावर ने भी ढोल के नीचे वो निकलता
8: अया
7: कहता कि फिर कोई आदि व्याधि को ना आवे, तो ऐसी मान्यता रही है। और अया भी कहे जावे कि जसोदा मैया आज के दिन जलवा पूजी,
8: बिल्कुल सर
7: है ना, तो यह बात तो है ही। और जयान की भाई ग्यारस की बात है और आपनी मान्यता वाली बात है, संस्कृति की बात है, तो छोटा छोटा दिन आने विशेष महत्व देर भी की जो परंपरा है भी के माध्यम प्रकृति की तरफ लियो जावे है। जय क्या बात तालाब री बात कर रहा हो और जल संचयन की बात कर रहा हो, तो आपने तो अठे राजस्थान में तो कुआ तालाब ही को नहीं होता, प्राकृतिक जल स्रोत भी कम होता, पर बरसात को यो जो समय रहता तो अब तो बरसात भी कम होबा लागी, पर जब ठीक ठाक बरसात होती तो नीझर चालती और थोड़ी थोड़ी जगह पे जो तालाब बावड़िया बढ़वाता पहली का लोग वे भर जाती, तो बठे जार एक तरीका से परमात्मा को वे धन्यवाद देता।
8: बिल्कुल सर, और देखो एक ही साथ ही बंद देखो दोक और खुद को देखो सबने जो अपना गांव का जो निवासी है बस सब आपका सुख सब कुशल मंगल रहे भी के लिए दोक अर्ज भी करे और पूरा गांव के मायने फेरी लगवा, और साथ में जो अभी मौसमी जो गांव में फल है यानी कि जो ककड़ी है कोई तरबूज तरबूज है और कोई है जो बन चढ़ाओ भी है प्रसाद से।
7: बिल्कुल, और आपने जो कृष्ण भगवान रहा है वे तो गाया का ग्वाल रहा है, और जो प्रकृति है और जो अपना पशु है आके बहुत नजदीक रहा है, बाको बहुत महत्व बताया ही है आज की बातचीत में भी, क्यों इस तरीका की जानकारी आप ले रहा है साहब।
8: बिल्कुल सर,
7: तो सुना दे जानकारी।
8: सुनाओ साहब।
7: सुनाओ साहब।
9: किसान भैया आज अपने बीच मौजूद है डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव, सहायक आचार्य PGIVER जयपुर से आप आए हैं, और आपसे आज मैं बातचीत कर सिया जानकारी ले सिया दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और बीके महत्व के बारे में। डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव।

0: यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
1: राम राम सा, सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा राम राम।
0: डॉक्टर साहब, दुधारू पशुओं का मैं कृत्रिम गर्भाधान और बी के महत्व के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली तो जो माँ का किसान और पशुपालक भाई ही बने, यही बताओ एक सामान्य भाषा में कि कृत्रिम गर्भाधान कहीं हुए है।
1: किसान भाइयों, एक उत्तम नस्ल के नर पशु से उसके वीर्य को एकत्रित करके, उसको संरक्षित करके और सही समय पर मादा पशु के जनन अंगों में सही जगह पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं और ये पशु को गर्भित करने के लिए करवाई जाती है। प्राकृतिक समागम या प्राकृतिक जो है मिलन पशुओं में सामान्यतया गांव में हम लोग देखते हैं कि सांड या पाड़े से पशुपालक भाई अपने गाय भैंस को गर्भित करवाते हैं, लेकिन इस कृत्रिम गर्भाधान की विधि के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिनकी वजह से हमें इस कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना चाहिए। अब ये विधि कृत्रिम गर्भाधान उससे अच्छी क्यों है? सबसे पहले तो इस विधि से पशु के नस्ल का हम सुधार कर सकते हैं, यानी जो हमारा पशु है जो हम गांव में रखते हैं उसकी यदि नस्ल थोड़ा सा कमजोर है, कम दूध देने वाली है, तो कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग से हम उससे अच्छी नस्ल वाले पशु ले सकते हैं जिससे वो आगे चलकर बहुत अधिक उत्पादन करेंगे। दूसरा, इन पशुओं के रखरखाव में, मान लो नर पशु जो है सांड है या पाड़ा है, उसके रखरखाव में जो खर्चा है वो इस कृत्रिम गर्भाधान विधि में कम होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जो जनन के अंगों के माध्यम से फैलते हैं, उनसे हम इस विधि से बचाव कर सकते हैं। और कुछ छोटे बड़े पशु होते हैं, नर और मादा पशु, उनके बीच में चोट की संभावना है, उससे भी हम बचाव कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आप कृत्रिम गर्भाधान और बी के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं और आप जानकारी दे रहे हो, थोड़ा सा जो माँ का पशुपालक भाई ही बने और विस्तार से ये बताओ कि जो नर सांड है बी को पूरी तरह से जो आप प्रजनन क्षमता है बी को उपयोग करना चाहवा तो किस प्रकार से क्यों जा सके है कृत्रिम गर्भाधान में।
1: पशुपालक भाइयों, एक नर जो सांड होता है या पाड़ा होता है वो अपने पूरे जीवन काल में कुछ सैकड़ों या हजार जो गायों या भैंसों को गर्भित कर सकते हैं, लेकिन इस कृत्रिम गर्भाधान की विधि से उस अच्छे नस्ल वाली सांड को कई लाखों पशुओं को हम गर्भित करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक जगह के पशुओं को, हम उस सीमन को संकलित करके, एकत्रित करके, संरक्षित करके उसको किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में उसको जो है हम गर्भित करवा सकते हैं, यानी उसकी पूरी जो जनन क्षमता है उसका हम नर सांड का जो है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा, उन्नत नस्ल जो है उसके लालन पालन का खर्चा यदि हम पहले की तुलना में देखते हैं कि हमारे गांव में जो सांड है उनको पाला जाता था तो उसका खर्चा ज्यादा बैठता है, क्योंकि आजकल चराई का क्षेत्र जो है कम हो गया और उस पे जो है वही सांड एक यदि बार बार क्रॉस करता है तो उसकी जनन क्षमता या आगे आने वाली संतति है उसमें भी थोड़ा सुधार की गुंजाइश कम रहती है। इसलिए इस विधि से हम जो है जेनेटिक इंप्रूवमेंट यानी उसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी पर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जनन अंगों के माध्यम से, नर और मादा के मिलन के माध्यम से जो है वो एक दूसरे जानवर में फैलती हैं, तो इस कृत्रिम गर्भाधान विधि से जिसमें कि वीर्य पूरी तरह से टेस्टेड होता है, प्रयोग में लाया हुआ होता है और उसको पूरा सही तरीके से तैयार करते हैं, तो इसमें जो बीमारियां हैं, ब्रुसलोसिस है, ट्राइकोमोनियोसिस है, इससे बचाव हो जाता है। अन्य जैसे कोई वजन है, जैसे हमारी गाय है वो थोड़ा कम वजन वाली है और जो सांड है वो ज्यादा वजन वाला है, तो हो सकता है इन दोनों के मिलन के वक्त गाय को जो है चोट हो सकती है या सांड के भी कोई दिक्कत हो सकती है, तो इस विधि के द्वारा इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब यदि कोई अच्छी नस्ल या जेनेटिक्स का अपने पास, अपने गांव में मान लो कोई बुल है और तो हम किसी दूसरे गांव या पड़ोस के किसी एरिया में यदि मान लो गर्भाधान करवाना चाहते हैं तो उसको वहां पे ले जाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन का खर्चा पड़ता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि में किसी एक जगह अच्छी नस्ल का वीर्य एकत्रित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में इसको संरक्षित किया जाता है, तो इसमें इस तरह का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होती वो ये आसान

0: आसानी से हमारे पास सुलभ रूप से मिल जाता है। कई पशु ऐसे होते हैं जिसको अपन देसी भाषा में मरखने भी बोल देते हैं, या फिर जो ताव में, गर्मी में, मद में आते हैं तो वो दूसरे पशु को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देते, या नर पशु के भी किक करते हैं, मारते हैं। तो ऐसे पशुओं को हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भित करवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लो कोई अच्छा पशु है, नर पशु है, और उसके किसी तरह की चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो जो है नॉर्मल या प्राकृतिक जो समागम है उसमें वो अपनी जो है गर्भाधान की क्रिया नहीं कर पाता, लेकिन इस कृत्रिम गर्भाधान की विधि से उसके वीर्य को भी हम एकत्रित कर लेते हैं और बाद में उसके वीर्य को हम काम में ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस विधि के माध्यम से हम अपने पशु के जो जनन के रिकॉर्ड हैं या जनन से संबंधित जो उसकी जो उसके चक्र की व्यवस्था है उसको हम आसानी से उसका लेखा जोखा रख सकते हैं। और उस लेखा जोखा के माध्यम से यदि उसमें कोई परेशानी है, उसमें जनन क्रिया में कोई दिक्कत है, तो उसका पता भी हम आसानी से लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप पशुओं का मैं गर्भाधान की बात कर रहे हैं, तो अपना जगह पशुपालक भाई ही वह जब पशु ताव में आ जाए तो बिना गर्भाधान के ले जाए, तो पशुपालक भाई ने किस प्रकार से बेरो पड़े कई लक्षण बने दिखे कि पशु जो है वो ताव में आ गयो है?
0: पशुपालक भाई, बहुत अच्छा प्रश्न जो किया गया है। एक पशु ताव में, गर्मी में, हीट में, मद में जब भी आता है तब उसके सही रूप से पहचान बहुत जरूरी है। पहले कई सारे मवेशी एक साथ रहते थे, उनके बीच में नर सांड रहते थे, लेकिन आजकल जो पशुपालक भाई हैं वो एक या दो पशु रखते हैं, तो उस समय ये समस्या बन जाती है कि वास्तव में वो नर मादा पशु अपना गर्मी में, ताव में, हीट में है या नहीं है। तो इसके कुछ बाहरी लक्षण होते हैं, कुछ आंतरिक लक्षण होते हैं। इसको जो बाहरी लक्षण होते हैं, पशु जो दर्शाता है, उसमें इस मध्य काल में जो 21 दिन का जो चक्र होता है उसमें इस एक दिन में वो बार बार जो है पेशाव करेगा, रंभाएगा, बेचैन रहेगा, एक पारदर्शी कांच जैसा उसके जो जनन अंगों से स्राव जो है वो बाहर आएगा, उसका योनि द्वार फूला हुआ होगा, लालिमा लिए हुए होगा, पशु अपनी पूंछ है उसको उठाए हुए रहेगा, खूंटे के चारों तरफ घूमेगा, बेचैन रहेगा, पशु के दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इस तरह की चीजें हैं जो बाहरी तौर पे पशु के गर्मी में आने पे सामान्यतया गाय में दिखाई देती है। भैंस में थोड़ा सा लक्षण जो है इससे थोड़े कम होते हैं, और भैंस में एक डोका जो है वो भैंस देती है, यानी अपने थनों में दूध भर लेती है, तो इस तरह की प्रक्रिया भैंस में देखने को मिलती है। कुछ आंतरिक लक्षण होते हैं जो पशुपालक भाइयों, जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जो पर्सन आता है, जो टेक्नीशियन आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो उसको देख के पता करते हैं कि उसके जनन अंगों में वास्तव में अंदर किस तरह की स्थिति है, कि वो मद में है या नहीं है। तो हमें बाहरी लक्षणों को बहुत अच्छे से जो है देखना है और फिर उसी हिसाब से हमें आगे जो है बताना है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप लक्षण तो बताया कि जब पशु ताव में आ जाए तो किस प्रकार से आंतरिक और बाह्य लक्षण प्रकट हुए, और पशु के ताव में आवा के बाद में कौन सो समय उचित है जब कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए?
0: सामान्यतः एक गाय है वो लगभग 24 घंटे के लिए हीट में, मद में, ताव में, गर्मी में आती है, और एक AM PM रूल सामान्यतः बताया जाता है कि यदि पशु सुबह गर्मी में आना शुरू करता है तो उसको शाम को आप जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, और यदि शाम को आता है तो 12 घंटे बाद यानी सुबह उसको आप गर्भित करवाएं। भैंस थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक जो है गर्मी में रहती है, 24 से लगभग 30-35 घंटे तक रहती है, तो जाती भी जो गर्मी है, हीट है, मद है, ताव है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाना उचित रहेगा। और इसके लिए ज्यादातर पशु कई बार रात में या बिल्कुल सुबह में या शाम में हीट में आते हैं, तो थोड़ा इनका सावधानी पूर्वक देख के हम इसका AM PM रूल, सुबह शाम का जो ये नियम है, इसके हिसाब से हम उसको गर्भित करवा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान का द्वारा अपना जगह पशुपालक भाई ही वह केवल नर या फिर केवल मादा को चयन करना चाहे तो किस प्रकार से कर सके?
0: आजकल ये नई तकनीकी पशुपालक भाइयों आ गई है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे फार्म पे या हमारे घर में कि गाय बछड़ी ही पैदा करे, भैंस जो है पाड़ी पैदा करे, तो इस तरह की तकनीक के माध्यम से सेक्स सोर्टेड सीमन के माध्यम से लिंग वर्गीकृत वीर्य

0: के माध्यम से ये सब चीज संभव है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जो उत्पन्न होते हैं उसके हिसाब से उसके वीर्य को अलग किया जाता है और फिर उस वीर्य का कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसका काम में लिया जाता है और लगभग 90 से 95% तक ये प्रक्रिया लगभग सही रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान जो है इन्हें कराने के बाद में कौन कौन सी जरूरी बातें ही, कौन कौन सी सावधानी ही जिसकी पशुपालक भाई ने ध्यान में रखनी चाहिए?
0: पशुपालक भाइयों, कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद में पशु को स्ट्रेस या तनाव में नहीं लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि पशु कूदा फांदी कर रहा है या थोड़ा बेचैन है तो उसके साथ जो है मार पिटाई करनी है या उसको बहुत भगाना है या उसको जो है, कई पशुपालक भाई है वो बिल्कुल उन पर नाराजगी जैसा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा ना करके उसके साथ थोड़ा शांति से व्यवहार करें। उसको बहुत ज्यादा पैदल ना चलाएं, धूप में ना रखें और उसको बैलेंस राशन, साफ पीने का पानी ये उपलब्ध करवाएं और इस तरह की कुछ सामान्य खनिज लवण मिश्रण जो है वो दें। कुछ सामान्य सी जो चीजें हैं वो करके कृत्रिम गर्भाधान का बहुत अच्छे से उपयोग पशुपालक भाई कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप अपने नजदीक के पास के जो है पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आजकल लगभग अपने देसी और विदेशी दोनों तरह की नस्लों के जो है सीमन की डोज जो वहां उपलब्ध रहती है। कई कई सेंटर्स हैं उन पे सेक्स सोर्टेड सीमन यानी लिंग वर्गीकृत वीर्य जो है वो भी उपलब्ध रहता है और बहुत ही सब्सिडी के तौर पे वो वहां पे उपलब्ध है। पास के जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र हैं वहां पे भी सीमन की व्यवस्था है और जिला स्तर पे जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय है, वहां पे भी ये सब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा सुलभ और उचित दर पे उपलब्ध है। तो पशुपालक जाकर अपने पशु की नस्ल का संवर्धन कर सकते हैं, कम खर्च में दूध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और प्रजनन से संबंधित होने वाली कई सारे रोग जिनका हमें पता भी नहीं चलता है लेकिन कृत्रिम गर्भाधान करते वक्त हमें उनका कई बार पता चल जाता है तो उसके रोगों का निदान भी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत जो है अच्छी तकनीक है जिसमें हम चाहे ना चाहे लेकिन पशु के जनन अंगों को जब पहचान करते हैं, महसूस करते हैं तो यदि उनमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह का कोई रुकावट है तो उसको भी चेक करके हम तुरंत उसका उपचार भी कर सकते हैं। तो इसलिए पशुपालक भाइयों, मेरा निवेदन है कि कृत्रिम गर्भाधान विधि से आप अपने पशु को गर्भित करवाइए जिससे कि आपको अच्छी आमदनी और आय जो है वो मिले।
1: जी, तो देखो पशुपालक भैया, आप सुना कि कतरा फायदा ही कृत्रिम गर्भाधान का और की प्रकार से जो है पशुओं का माया नस्ल सुधार के लिए भी बहुत ही उपयोगी है कृत्रिम गर्भाधान। डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव, सहायक आचार्य PGIVER जयपुर से आप आया और किसान और पशुपालक भाई ने दुधारू पशुओं का माया कृत्रिम गर्भाधान और भी कई महत्व के बारे में अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी। एक वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम सर।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: बहुत ही सातरी जानकारी तो जो है सुमित प्रकाश यादव जी दिया और बत्री ही चोखा तरीका सु महेश भाई दुआया भी है।
6: बिल्कुल
5: सा। तो धन्यवाद दोनों नहीं देवा।
6: बिल्कुल सा।
5: और कोरो कोनी देवा तो मुजब चौपाल की रीत सुनाएंगी।
6: बिल्कुल साहब।

0: वाह भाई, बहुत ही चोखो भजन आप सुना दिया। और ठाकुर जी की बात रही और हीरा लाल राणार पार्टी का ऐश्वर रहा, बहुत चोखो भजन सुनाया साहब।
1: बिल्कुल सर। और देखो आप बात कर रहे हैं जलदूरनी गैरस का बारम, तो और बता दो।
0: देखो ग्यारस जो है आपने अया कहवे है, आयुर्वेदिक महत्व भी को है कि एक दिन को उपवास कर वो आपने आयुर्वेद में बताया कि पेट ने आराम देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: है ना। और सात्विक भोजन जो है वो भैया भी आपने संस्कृति के हिस्सों रहे है। दूसरा जो प्रकृति की बात है, प्रकृति से जुड़ाव आपने रहना चाहिए, ये भी आपने कला संस्कृति बतावी है। और एक चीज जो हर कोई बतावे है कि जो समय को पहियो है वो घूमते रहे और सबने घुमावे, तो आपने भी इके साथ साथ चालनो पड़े लो साहब।
1: बिल्कुल सर। तो आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टेम पूरो है।
0: बिल्कुल, तो फिर चाला अगला कार्यक्रम की करा ला तैयारी फिर आशा, पर आभार के लिए कर लिया।
1: राम
0: राम
1: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के हामी चैनल से किया गया। और अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाटो डीकता सगला काश्तकार भाई बड़ा ने जंजलो ने भरियो मीठो मीठो हरियो भरियो सुराम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने एक बार ओजू ठोगर अचे सा। राजू भाई आपने भी एक बार ओजू राम राम सा।
1: राम राम सा जंजल बहन और खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ने राजू भाई को राम राम सा।
0: राजू भाई आपके ना बरसात बशी कौन हुई जैसी होनी चाहिए जैसी।
1: बिल्कुल देखो बरसात काफी कम रही है जो अपना जो फसला है अपना जो डांडा सांसर है बंद दुनिया ने ये चीज को देखो नुकसान हुए है मतलब
0: बिल्कुल असर हुए है। और जटे तक ढांडा ढोरा की बात है बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो बरसात वह ना वह पर आपने इस टाइम में कर लेना चाहिए क्योंकि आगे सर्दी आवली।
1: बिल्कुल देखो यो महीना को जो है सितंबर को बरसात रुकया बाद में यानी कि कम हुआ बंद हुआ बाद में उमस और थोड़ी हल्की ठंडी सी थोड़ा देखो मौसम होने जो बदलाव है तो बिक मायन अगर आप लापरवाही करा जानवर का खान पीन में रहन सहन में तो अपना जो पशु है बीमारियां भी हो सके और देखो दूध उत्पादन है वो भी घट जावे।
0: बिल्कुल
1: तो और अपने देखो सितंबर का महीना के बाद में जो उचित देखभाल करनी चाहिए बाहर देखो एक तो बाड़ा की साफ सफाई और नमी से बचाव करे यानी सूखो जो स्थान हुआ बारिश के कारण कई बाड़ा का नमी या कोई घास फूस सूख जावे या जड़े पानी जमा हो जावे कदर नीचे रहे हुए तो बड़े कोई कचरो वगैरह इकट्ठो रहे हो तो बन आपा हटा देना चाहिए जानवर बैठे जो साफ सुथरी जगह रखना चाहिए
0: जी।
1: और चूना को छिड़काव का जो बाड़ा को पर्स और दीवारा जो है अगर थोड़ी पर्स मजबूत है पक्को है तो बड़े अपन छिड़काव करना चाहिए ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कीटाणु है जो नष्ट हो जाओ। और जो उचित हवा को आवागमन देना चाहिए ताकि उमस कम रहे और बाड़ा में हवा आती जाती रहे और जो अपने जो बिछावन है जो जानवर बंदा बड़ा जो गिलो रहे वो सूख जाए।
0: दूसरी जी की बात है आपने बाकी जो खाबा पीबा को आप ध्यान तो रखा ही ला पर सब पहली ध्यान रखना है कि जो ठाणो है बाको भी की साफ सफाई को ध्यान भी आपने रखना है। कई बार यहाँ हो कि आपा भी भरोड़ो एक तो पानी बहुत दिन तक रहे तो आपा कौन पीवा आपन लगे भी में कोई कीड़ा होगा वेला यही ढांडा के ताई भी है कि वहां को जो ठाणो है बिकी भी साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। दूसरी जी की बात है कि यू मौसम अशो है कि ढांडा में भी सर्दी जुकाम की समस्या हो है। अब एक बीमार ढांडो और एक स्वस्थ ढांडो अगर एक ही खेली में सु पानी पी रियो है तो दोनों में संक्रमण को आदान प्रदान हो सके है तो इको भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा संतुलित पशु आहार को ध्यान आपने रखना है। नमी को मौसम है कई बार यहाँ हुए कि जो दानो हुए है बाटो हुए है भी में फफूंदी लाग जावे तो अशो खानो नहीं देना चाहिए जी में कोई कह तो अखाद्य पदार्थ मिलोड़ो हुए के फफूंदी हुए कोई गंध आ रही हुए तो नहीं देना चाहिए क्योंकि एक तो ढांडा की सेहत खराब हो सके और अगर दूध दे वालो ढांडो है तो बिकर दूध में भी वह महक आ सके है।
1: बिल्कुल और देखो हरे और सूखो चारा को भी संतुलन बना रखना चाहिए कि हरे चारो एक भाग दे तो सूखो चारो तीन भाग देना चाहिए साथ में जो पोषण की कमी नहीं हुए दूध उत्पादन अपना जो पशु को कम नहीं हुए तो नियमित रूप से अपन देखो खनिज मिश्रण भी देते रहना चाहिए और जो को नमक है वो भी डालना चाहिए और साइलेज भी बनाना चाहिए जो अपने खरीफ की फसलें ज्वार मक्का बाजरो देखो अन्न आप थोड़ा हरी अवस्था में काटा को साइलेज बना सुरक्षित रख लिया तो सर्दियों में अबड़ा टाइम में अपने सही काम आ जाओ। और जो बीमारियां और परजीवी है बसु भी सुरक्षा करनी चाहिए लंपी स्किन डिजीज है गलगोटू है पेट का कीड़ा और कोई चिचड़ी है तो आपके लिए भी देखो उचित दवा और टीकाकरण अपन लेना चाहिए पशु चिकित्सक की सलाह ले।
0: और कृमि नाशक तो बरसात के पास चौमासा में देवे ही देवे अपना जो ढांडा ढो रहा है बाने देना ही चाहिए ताकि पेट का कीड़ा को इलाज हो सके। और देखो समय सारू सारा काम चोखा लागे जाइया अब बाता चीता होगी जानकारियां होगी तो एक गीत अगर आपा सुन लिया तो कार्यक्रम में थोड़ा सा और

0: लगे
1: बहुत ही चोको अपा देखो एक लोक गीत सुनया हम परदेशी फकीर बजलो रामा पीर अभय सिंह गहलोत की आवाज में और देखो प्रोग्राम कार्यक्रम में ले जाना पा जानकारी की ओर
2: बिल्कुल साहब तो जानकारी को जो पिटारो है वो खोले जावे और जानकारी दुआई जावेली साहब तो सुना जानकारी
3: करसा भाई बहन आज आपा के साथ जानकारी देवा के लिए डॉक्टर प्रियांशु त्रिपाठी

0: विषय विशेषज्ञ गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र करौली के मायने कार्यरत है और आज आपा ने कृषि विज्ञान केंद्र री भूमिका महिला प्रशिक्षण के मायने काई छे ई विषय पर जानकारी देवेला। तो सब पहली तो स्वागत छे, राम राम सा।
1: राम राम सा
0: डॉक्टर साहब, थे सब पहली तो माने यह बताओ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हुआ करे है वो काई हुआ करे है।
1: कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में स्थापित की गई संस्थाएं हैं। ये एक प्रोजेक्ट के तहत स्थापित की गई थी। ये सबसे पहले पांडिचेरी जो है वहाँ स्थापित की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि विज्ञान को किसानों से जोड़ना, खेती से जोड़ना, ये मुख्य कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र का। विशेष रूप से जो भी नई तकनीकियां हैं वो हमारे किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि जो परंपरागत तकनीकों पर हम चले आ रहे हैं उनसे हम उतनी उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते जितनी कि आज के वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि जितनी हमें मांग है, जितनी हमें आवश्यकता है। इसी के लिए जितनी भी नवीन तकनीकियां हैं वह सभी जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। यही मुख्य कार्य कृषि विज्ञान केंद्र का है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस वित्त पोषित संस्था की स्थापना की है। ये सभी जिलों में एक या दो कार्यरत हैं और अगर हम पूरे देश की बात करें तो 747 कृषि विज्ञान केंद्र अभी पूरे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार की योजनाओं को, तकनीकियों को और नई जानकारियों को हमारे किसानों तक सीधे पहुंचा रहे हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है।
0: जी, अब हमें ये जानबो चावला की जो खेती है बी के मायने महिलाओं की जो भूमिका है वो कायम हुआ करे है।
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक विकासशील देश है।
0: जी।
1: इस विकासशील देश में जितने भी हमारी पुरुष और महिलाओं की आबादी है लगभग बराबर सी है और इस आबादी के अंदर हम देखते हैं कि आज के समय में पुरुष जो है शहरी क्षेत्रों की ओर अपने पलायन कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए और जितने भी कृषि से संबंधित कार्य है, यानी कृषि का, खेती बाड़ी का जो भी प्रबंधन है वो महिलाओं को संभालना पड़ रहा है।
0: जी।
1: और महिलाओं को उतनी अच्छी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भरसक प्रयास से हमारे देश के आर्थिक विकास में खेती के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हमारे देश में 80% जनसंख्या अभी भी गांव में और खेती पर निर्भर है और ये खेती के कार्य जो हैं हमारी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें चाहे खेती से संबंधित जितने भी कार्य हैं, अगर हम निराई गुड़ाई की बात करें, बुवाई की बात करें या फिर हम अनाज की सफाई की बात करें या कटाई के बाद जितने भी कार्य होते हैं, फसल के कटने के बाद जब वो आ जाती है तो उसके बाद जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य जो है हमारी महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इन महिलाओं को इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके, नई नई तकनीकियों की जानकारी दी जा सके ताकि ये अपने खेती के अंदर उत्पादकता जो है और अधिक बढ़ाएं। अभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको हम अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये जितने भी खेती से संबंधित कार्य हैं वो अभी हमारी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही किए जा रहे हैं। या तो वह अपने खेत पर, खुद के खेत हैं तो उन पर एक निराई गुड़ाई और जितने भी खेती के कार्य होते हैं वो करती हैं या फिर वो एक मजदूर के रूप में दूसरों के खेतों में जाकर के ये जितने खेती के कार्य हैं वो संपन्न कर रही हैं। इसके एवज में उन्हें उतना आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। इतना अधिक कार्य करने के बाद में, इतना अधिक श्रम करने के बावजूद उनका श्रम का पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने की वजह से हम उन्हें खेती के अंदर ही नहीं, खेती के साथ साथ खेती से संबंधित रोजगार के अवसर जो हैं वो उनके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी साक्षरता जो है एक चुनौती के रूप में उनके सामने खड़ी है। और इस साक्षरता को ध्यान में रखते हुए कि अगर जो निरक्षर महिला है तो उसमें किस प्रकार के कौशल विकास किए जा सकते हैं, किस प्रकार से उसको रोजगार दिया जा सकता है, ये कार्य करना हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है।
0: अब अठे या जानबू चावला की जैन की ग्रामीण महिलाओं है वहाँ के रोजगार का अवसर जो उपलब्ध करवा रहा है बाके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ सर।
1: हमारे भारत सरकार ने जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उन ग्रामीण महिलाओं के लिए दो प्रकार के हमारे उद्योग जो हैं वो उसमें अवसर उन लोगों के लिए बनाए हैं। एक है गैर कृषि उद्योग और एक है कृषि उद्योग। अब जब हम गैर कृषि उद्योग की बात करते हैं तो गैर कृषि उद्योग में जो भी महिलाएं हैं उनकी रुचि के अनुसार भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसमें हम गैर कृषि उद्योगों में बात करें तो जैसे कि मोमबत्ती उद्योग हो गया या फिर उन्हें चाक व कलम उद्योग हो गया, साबुन डिटर्जेंट बनाना सिखाना या बांधनी का उद्योग हो गया, कपड़ों पर रंगाई छपाई का कार्य करना, अगरबत्ती बनाना, ये इस तरह के कार्य जो है वे

गैर कृषि उद्योग में आते हैं, जो महिलाएं चाहें तो सीख सकती हैं और इसमें भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की कोशिश है कि खेती से संबंधित रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध करवाएं। तो इसके लिए खेती से संबंधित यानी कृषि उद्योग जो है हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने भी खेती के उत्पाद हैं, हम उत्पादन में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम उत्पादन के अंदर हम फल सब्जियों की बात करें या दूध उत्पादन की बात करें, तो इसमें हमारे भारत देश का बहुत ही टॉप पे नाम है, शीर्ष पर नाम है। लेकिन इनके उत्पादन के साथ में ही इसका नुकसान जो है वो भी हमारे देश को बहुत झेलना पड़ रहा है। तो इसी क्षेत्र में कृषि से संबंधित उद्योग जो है, इनमें हम ग्रामीण महिलाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, जिसे हम एग्रोप्रेन्योरशिप भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको मैं हिंदी में बोलूं तो खेती से संबंधित उद्योग, जो भी कटाई के बाद में हमारे पास अनाज आ गया है, ये हमारे लिए एक संसाधन है। अब हम इस संसाधन से अपने लिए क्या रोजगार बना सकते हैं, तो इसी संसाधन को जो आपके पास अनाज आया है या दलहन है या तिलहन है, जो भी चीजें आप अपने खेतों में उगा रहे हैं, उससे जो उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो उसका आगे प्रसंस्करण करके और मूल्य संवर्धन कर उसमें आप रोजगार, अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकती हैं। तो यह स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर हमारी ग्रामीण महिलाओं का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और इसी के साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे ग्रामीण महिलाओं के लिए उतना आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो वो अपने जो भी उत्पादन उनके खेतों में हो रहा है वो उसे एक जगह से दूसरी जगह पे इतना जल्दी नहीं भेज सकती हैं जिससे कि वो ज्यादा कमा सकें। तो उनके लिए एक आसान सा जरिया है कि ये जो कच्चा माल हमारे खेत में उगा है, इसे ऐसे के ऐसे ले जाके मंडी में बेच दो और जो भी रकम आए उसे ले लो। लेकिन इसमें भी अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिलाओं को समझाने का और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उदाहरण के तौर पर आपके खेत में बाजरा हो रहा है खरीफ के समय में, तो उस खरीफ के समय में बाजरे की फसल से आप उस बाजरे को सीधे ले जाके मंडी में मत बेचिए, या फिर व्यवसायिक जो भी लोग हैं उन्हें इस तरह से मत बेचिए, क्योंकि व्यवसायिक स्तर पर जो बाजरा जाएगा उसको शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, या उससे जो उत्पाद बनाए जाएंगे उसमें भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो छोटे छोटे समूह बना करके, और समूह अगर वो नहीं भी बनाना चाहती हैं तो वो अपना अकेले भी इस कोई उद्योग के रूप में आगे बढ़ा सकती हैं। तो बाजरा जो है वो उससे उसके बिस्किट बना करके, केक बना के, नान खटाई बना करके, पफ बना के, इस तरह के उत्पाद बना करके, यहां तक कि बाजरे की चॉकलेट की तकनीकी भी विकसित की जा चुकी है काजरी जोधपुर के द्वारा, जो भी हम किसान महिलाओं को सिखा रहे हैं। तो वो इस तरह के उत्पाद बना करके और अपने स्तर पर उन्हें आगे एफपीओ के माध्यम से, या फिर मार्केट जो है वो आगे उन्हें किसी भी उसमें होटल और रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत बढ़ रहे हैं आज के समय में, तो यहाँ पे अपने बिस्किट जो है, कुकीज जो है वो अपने वो बेच सकती है और अच्छा मूल्य कमा सकती है। जिस बाजरे का मूल्य वो 20 से 25 रुपए किलो कमा रही थी, अगर इसे ही कुकीज में वो बदल दें तो इसका मूल्य वो 750 से 800 रुपए किलो तक कमा सकती हैं। तो इस प्रकार के स्वरोजगार जो है वो हम इसमें खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से महिलाएं स्थापित कर सकती हैं। और खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में सिर्फ अनाज ही नहीं आता, मैंने आपको उदाहरण बाजरे का दिया है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि अनाज के साथ में दलहन जो है, अगर आपके यहाँ पे दालें हो रही है तो हम पुराने जमाने से देख रहे हैं कि दालों से पापड़ बड़ी सब बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में वह इतना समय शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को नहीं होता है। तो महिलाएं, अगर ग्रामीण महिलाएं चाहें तो वह इसे दालों को सीधे न बेच करके इसकी ग्रेडिंग, सफाई और पैकिंग करके और सीधे जो है वह शहरों में, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करवा सकती हैं, और इस तरह के जो उत्पाद हैं जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही लाभप्रद हैं, वह उत्पाद अपने घरेलू स्तर पर बना करके और घरेलू इकाइयों के माध्यम से वह शहरों में उपलब्ध करवा सकती हैं, जिससे कि हमारे देश का स्वास्थ्य जो है जिसकी हम बात करते हैं वो भी अच्छा रहेगा और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ीकरण होगा। ये मैंने अनाज और दलहन की बात की। इसके अलावा हम तिलहन के क्षेत्र में देखते हैं कि सरसों के क्षेत्र में हमारे यहाँ भरतपुर का जो क्षेत्र है, भरतपुर संभाग बहुत अग्रणीय है, लेकिन सरसों उगा करके और उसे सीधे मंडी में ले जाकर के बेचना ये इतना फायदे का नहीं है जितना कि आप अगर किसान महिला चाहे तो अपने यहाँ पे एक यूनिट लगा करके और उसकी प्रोसेसिंग कर सकती है, और सरसों की प्रोसेसिंग से जो कच्ची घानी का तेल है वह उसे बेचने में काम ले सकती है, जो खल है वो पशुओं के काम आ सकता है। इसी के साथ टमाटर हो गया, जो भी बहुत कम समय तक चलता है, हम देखते हैं कि अगर हम टमाटर की खेती हमने बहुत ज्यादा कर ली है और टमाटर की बम्पर पैदावार हो गई है तो टमाटर की कीमत जो है आपकी 10 रुपए किलो तक चली जाएगी और उसका आपको उतना मूल्य नहीं मिल पाएगा जितनी आपने उसमें मेहनत की है, जिस उतना मूल्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगी। तो इसी
क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इस टमाटर की प्यूरी या फिर इसको सुखा करके इसका पाउडर या कैचअप सॉस चटनी इस तरह की चीजें बनाकर

0: के मार्केट में लेके आए और जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए हैं भारत सरकार ने, या तो उसके माध्यम से बेचें या फिर अपने खुद के स्तर पर अगर वो बेच सकती हैं अपने उत्पादों को तो वो भी वह कर सकती हैं। और दूध जो हम बात कर रहे हैं, दूध भी हम देखते हैं कि उसका परीक्षा काल जो है बहुत कम होता है, और इस समय बाजार में जो घी मिल रहा है या फिर हम अभी जो हम आज की खबरों में देख रहे हैं कि जो मावा घी पनीर जो उपलब्ध हो रहा है वो बिल्कुल मिलावटी है। तो अगर हमारी ग्रामीण महिला चाहें तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और दूध से संबंधित जो उत्पाद हैं वो अपने घरेलू स्तर पर बना करके उनकी अच्छी पैकेजिंग करके और इसी के साथ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मार्केट में बेच सकती हैं और शुद्ध चीजें जो है वो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में उपलब्ध करवा सकती हैं और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपनी मार्केटिंग को आगे भी बढ़ा सकती हैं। जितना अधिक वो क्वालिटी गुणवत्ता नियंत्रण का काम करेंगी उतना ही अधिक उनके उत्पाद का प्रमोशन होगा, उतना ही अधिक उनका उत्पाद जाना जाएगा और उनकी एक पहचान बनेगी उनके ब्रांड की, और वो धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आती जाएंगी और उनका कार्य क्षेत्र जो है बढ़ता जाएगा और उनकी आमदनी जो है दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी।
1: तो बड़ी चुकी जानकारी दिया डॉक्टर प्रियांशु त्रिपाठी, विषय विशेषज्ञ गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र करौली के मायने कार्यरत है। थे अपना अमूल्य समय के मायने से समय निकाल किसान भाइयों तक यह चुकी जानकारी पुआई, इके लिए थको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: बिल्कुल, और धन्यवाद जयविकुम बहन, आपने भी की बहुत चोखी जानकारी दिलाई। और ई बात पर एक गीत सुना दो।
3: सुना सा।

0: तो देखो गीत की लहरिया में बहता बहता कार्यक्रम रो टेम पूरा हो गयो, पतो ही को नहीं चालियो, पर बहुत चोखो गीत आप सुनाया साहब, और अब चालबा को टेम हो रहे है।
1: बिल्कुल सा,
0: तो फिर चाला और करा राम राम, राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, लीजिए सुनिए आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से प्राप्त रामदेव रामेले 2026 की रेडियो रिपोर्ट।

0: सुबह बाबा की समाधि का पंचामृत से अभिषेक कर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापित किया गया।
1: इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शोहरे, बाबा रामदेव के वंशज एवं रामदेवरा ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक बाबा की मंगला आरती में शामिल हुए।

0: मंगला आरती के साथ ही मंदिर के मुख्य द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।
1: मंदिर के द्वार खुलते ही श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर देश और दुनिया के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी।
2: तो श्रोताओं, इस समय मैं हूँ बाबा रामदेव मंदिर के परिसर में और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इतने संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से, कई पैदल यात्री हैं, कई अपने वाहनों से आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं इन श्रद्धालुओं से, कितनी देर से लाइन में लगे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका?
3: लक्ष्मण।
2: कहाँ से आए हो आप?
3: बीकानेर से।
2: पैदल आए या वाहन?
3: गाड़ी लेके।
2: अच्छा, तो अभी लाइन में कितनी देर से लगे?
3: लगे दो घंटे हो गए।
2: दो घंटे हो गए, अभी कितनी देर और लग सकती है?
3: जितनी देर जो बाबा के दर्शन है जितनी लगे ले, कोई बात नहीं।
2: क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको बाबा के दरबार में पहुंच के?
3: बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी है।
2: और बहुत सारी महिलाएं भी हैं इन लाइनों के अंदर। तो हम बहन जी से बात कर रहे हैं। बहन जी, कहाँ से आ रहे हैं आप?
4: खेतरी से।
2: पैदल आए या गाड़ी से?
4: गाड़ी से।
2: अच्छा, बताइए लाइन में कितनी देर से लगे?
4: दो घंटे हो गए।
2: कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में पहुंच के?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: क्या मांगा है बाबा से आप?
4: कुछ तो मांगा ही है नौकरी के लिए।
2: और जरूर आपकी कामनाएं पूरी होंगी। और भी बहन जी हमारे, क्या नाम बहन जी आपका?
5: सुमन।
2: कहाँ से आए आप?
5: कोपर से।
2: लाइन में कितनी देर से लगे?
5: दो घंटे से।
2: छोटी बच्ची भी है आपके पास, तक ज्यादा कोई परेशानी तो नहीं हो?
5: परेशानी, दर्शन करना क्या ही परेशानी हो, दर्शन तो करना ही, परेशान होके करो थे कहेंगे।
2: अभी तो पहुंच गए दरबार में, आप कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा।
2: चलिए, अभी बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। एक छोटी बच्ची है हमारे, इसी लाइन में लगी है। बेटा, क्या नाम है आपका?
6: रुचिका।
2: अरे, थके तो नहीं हो? काफी देर हो गई होगी लाइन में।
6: नहीं।
2: अच्छा, तो बाबा से क्या मांगने आए हो? बताओ, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो आपकी?
6: हाँ।
2: कौन सी क्लास में हो?
6: सेकंड।
2: चलिए, अब तो बाबा के दर्शन होने वाले हैं और आप, मुझे लग रहा है आपकी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। तो श्रोताओं, क्या श्रद्धा का आलम यह है कि यहाँ पर घंटों लाइन में लगने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई थकान जैसी चीज मुझे किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है और सचमुच ये श्रद्धा का आलम बाबा के दरबार में बहुत ही अद्भुत है। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा के जयकारे चारों तरफ से गूंज रहे हैं।
0: मेले में आ रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन व ग्राम पंचायत रामदेवरा ने मिलकर माकूल व्यवस्थाएं की। जानकारी देते हुए सहायक मेला अधिकारी मनवीर सिंह।
7: इस समय हमारे साथ हैं सहायक मेला अधिकारी मनवीर सिंह। हम बात करते हैं कि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सुचारू दर्शन करके वो अपने घर वापस पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं और हम सहायक मेला अधिकारी मनवीर सिंह से जानते हैं। सर, बताइए कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी जरूरत होती है, जो तीर्थयात्री आते हैं उनके ठहरने के लिए और जो धूप होती है तो जो लाइन में लगते हैं ना, काफी देर लगना पड़ता है, तो वहाँ टीन सेट, पानी की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
8: सर, लाइन के लिए तो टिन सेट है, लगातार लंबा टिन सेट है। उसके अलावा टिन सेट के पास में टेंट लगा रखे हैं और टेंट के पास में जैसे वो टॉयलेट्स वगैरह वो भी लगा रखे हैं और परमानेंट टॉयलेट्स और वो शौचालय वो भी बना रखे हम लोगों ने और ये मोबाइल टॉयलेट्स है वो भी लिए हैं और साफ सफाई के लिए हमारे सर चार जोन बना दिए हमने और चार जोन में लगभग 1000 लोग 24 आवर्स काम करते हैं, रात में भी साफ सफाई होती है। और इसके अलावा सर कुछ मतलब एक तरह से सेवाभावी टाइप के लोग हैं, जैसे हरियाणा पंजाब से आते हैं 400 लोग, वो अपने निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, सेवा दल जिन्हें कहते हैं, वो हर साल आते हैं। इस साल भी 400 लोग आए हैं सर। तो साफ सफाई तो बहुत बढ़िया चल रही है सर। और तालाब में हमने

बाबा रामदेव का 642वां मेला जैसलमेर जिले की रामदेवरा ग्राम पंचायत में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को विधिवत रूप से आरंभ हुआ।

0: जो जैसे गंदा पानी होता तो एक तरह से उस पे केमिकल जो चूना है वो डाल के वो पानी भी एक तरह से साफ सुथरा है। और सिक्योरिटी के लिए भी हमने पुलिस के अच्छी मदद की है, पंचायत की तरफ से कैमरे लगाए हमने, 208 कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे और एआई बेस्ड पहली बार। इसके अलावा सर जो मेले में दर्शनार्थी है जो लाइन में लगे हैं तो लास्ट 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन हो तो भी वो 3 घंटे में बंदा दर्शन कर सकता है, क्योंकि हमने बैरिकेड लगा दिया साइड में तो कोई लाइन है मतलब कोई क्रॉस करके या कोई बीच में घुस नहीं सकता। और व्यवस्था बढ़िया रखी है, जिसके पंखे है, लाइट की व्यवस्था है, दर्शनार्थी है उनको लाइव निज मंदिर के लाइव दर्शन हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है सर, तो पूरी माकूल व्यवस्था की हमने।
1: जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बाबा की समाधि के दर्शन कर मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
2: पिछले 15-20 दिन से श्रद्धालुओं के आने का यहाँ पर लगा हुआ है, अब तक बताया जा रहा है कि 24 लाख लगभग श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं। और आज का दिन, आज की रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसके लिए प्रशासन, पुलिस, मेला समिति सभी ने बहुत इसमें अच्छी व्यवस्था की है। इसमें बहुत जगह जगह पर आप देखेंगे हमने पुलिस जाब्ता लगा रखा है, हमने एक स्वास्थ्य चौकी बना रखी है, यहाँ पर रैन बसेरे बना रखे हैं, मंदिर परिसर के अंदर खाने की निःशुल्क खाने की व्यवस्था है, साथ में सीसीटीवी कैमरा से नियमित तौर पर सभी मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं कोई इशू ना रहे। तो सभी का मिलकर इस मंदिर को के अंदर जो ये आज हो रहा है, आरती बहुत अच्छे रही और आगे भी मंदिर जो मेले का रहे है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, जैसा भी आपने बताया, क्योंकि सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ जो भी आ रहा है वो किसी एक मजहब का, एक रिलीजन का नहीं है, और उसी श्रद्धा के साथ। तो सारे जो भेदभाव हैं, सारी जितनी भी रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, मैं कहूँ क्लास बेस्ड, जो भी डिविजन्स हैं यहाँ के बाबा के उसमें आके सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कम्युनल हार्मनी, आपसी भाईचारे के साथ हम कैसे रह सकते हैं, तो ये रामदेव बाबा की धरती से सीखा जा सकता है।
3: बहुत अच्छा, एक उदाहरण है समरसता का ये वाला। तो आपने बाबा से क्या अरदास?
2: हमने बाबा से सभी के, जैसलमेर के लिए, सभी के लिए सुख शांति का, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब सब बहुत ही शांति से एक साथ धैर्य के साथ, ये आप देखें इतनी भीड़ में भी लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा, सोए नहीं है ये लोग। तो सभी सुख शांति के लिए, सभी की खुशहाली के लिए आज हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है।
1: सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए आप हैं जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे।
4: देखिए, आज 20 का दिन है, काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से बाबा जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जितने भी उच्चाधिकारी हैं सभी लगातार राउंड्स पे हैं। ट्रैफिक के लिए हमने अलग टीम्स लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा इस बार हमने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कैमरा लगाए हैं, जो अपने कमांड कंट्रोल रूम से सारे मेले पे, लोगों पे, भक्तों पे जो है नजर रख रहे हैं कि हर चीज सुचारू रूप से चले। इसके अलावा सादा कपड़ों में भी जाब्ता नियोजित किया गया है, जिससे कि कोई भी जेब कट रहे, चोरी की इस तरह की घटनाएं नहीं हो। महिलाओं के लिए कालिका पेट्रोलिंग का जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा लोगों को साइबर अपराधों के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए भी जागरूक करने के लिए हमने अपना एक कैंप लगा रखा है, जहाँ पे एलईडी टीवी पे आप देख सकते हैं जो दिशा निर्देश हैं। उसके अलावा अपनी सेल्फी कटआउट, फ्लैश वॉल और स्कैनर पे जो भी साइबर सुरक्षा से संबंधित एक ब्रीफ दस्तावेज है उसको डाउनलोड करके जान सकते हैं कि साइबर अपराधों के विरुद्ध अपने की सुरक्षा कैसे करें। करीब 2000 लोगों का नियोजन का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जैसा हर साल होता है। और पिछले साल जब मेले में मैं था तो इस बार, पिछले साल जो हमें जहाँ जरूरत लगी वहाँ पे इस बार ज़्यादा जाब्ते का नियोजन किया गया है। रेलिंग्स अलग से लगाई गई हैं, जिससे कि जो मेला है उसमें किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना।
3: बाबा के दर्शनों के बाद में एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं श्रद्धालु। एक श्रद्धालु दर्शनों के बाद हमारे साथ है, क्या नाम है सर आप?
5: जगमान भाई भरवार।
3: कहाँ से आए सर?
5: अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ।
3: अच्छा, दर्शन कैसे हुए?
5: दर्शन बढ़िया हुए, लाइन भी अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है और खूब पब्लिक आ रही है, दर्शन धूमधूम से कर रहे हैं हम लोग।
3: अच्छा, क्या मांगा बाबा से आप?
5: बाबा से हमने सुख संपत्ति मांगा, बच्चों का, परिवार को शांति दे, और क्या मांगे।
1: बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए। बाबा के चमत्कारों के बारे में बताते हुए एक श्रद्धालु।
6: बाबा रामदेव जी हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। तौर वंश में राजपूतों के घर में इनका अवतार हुआ, राजमल राजा जी के घर। यहाँ पे लोग भक्त, श्रद्धालु, गुजरात

0: हरियाणा बड़े दूर दूर से पैदल आते हैं भादवे में, कहते हैं कि भादवे में बाबा रामदेव जी यहाँ पे रहते हैं रूणीचा में, तो मान्यता है इसलिए लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरे भादवे की बीज को जैसे सोने का मुकुट चढ़ाए। बाबा रामदेव जी की सबसे बड़ी बीज है, बाबा रामदेव जी के वैसे खूब पर्चे भी है, पग पग पे पर्चे दिए, इसलिए भक्त बहुत बढ़िया मानते हैं। तो अपने घर परिवार में जैसे अपने भाणेजे को सांप ने काट लिया था, बाबा रामदेव जी का ब्याह था तो फिर वो उसको जीवित कर दिया था। और पांच पीर मक्का से आए थे वो जांचने के लिए कि भाई ये हिंदुओं में पीर कैसे है, तो उनको भी पांच पीरों को भी पांच कटोरों में अतिथि हमारे जो हिंदू सनातन संस्कृति का जो धर्म है वो सत्कार किया, उसको पांच पीरों को भोजन करवाया ना, तो फिर वो भी मान गए कि भाई हाँ हिंदुओं में पीर है, तो राम सा पीर नाम से विख्यात हो गए।
1: ये रूणीचो है मथुरा का सिर, रूणीचो है मथुरा का नव खंडारो नाथ बिराजे द्वारका वासी, रुणीचो है मथुरा काशी रे, रुणीचो है मथुरा काशी। जब दिनार के वटे आओ ला ला ला ला, जब दिनार के वटे आओ ला ला ला ला, जगमग जा सतराई हो राजा मुंदड़ी, मारी मुंदड़ी तो मते।

0: लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रामदेवरा आने वाले सभी मार्गों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भोजन पानी व ठहरने की व्यवस्थाएं की गई। जानकारी दे रहे हैं संस्था के संचालक।
1: बाबा रामदेव का जो मेला लगता है वहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत ही बड़ा रोल रहता है और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको यह बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आती हैं जो फ्री में खाना दवाइयां और जो कुछ उनको जरूरत होती है वो उपलब्ध कराती हैं। और वर्षों से कई संस्थाएं इतना बढ़िया काम कर रही है, बहुत सुंदर खाना साफ सफाई के साथ यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी एक संस्था में इस समय मैं मौजूद हूँ और इसके संचालक, क्या नाम है भैया आपको?
2: सोहनलाल जी।
1: सोहनलाल जी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हो, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो ये संस्था कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो और क्या क्या सुविधाएं दे पा रहे हो यहाँ पर?
2: सुविधा जी, ठंडे पानी की सुविधा दे रहे हैं, लंगर की दे रहे हैं, और मैनेज अपने आप ही हो जाता है, बाबा की मेहर है, पता नहीं कैसे हो जाते।
1: मेडिकल है और देखो
3: मेडिकल सेवा है, खाना है, पानी है, नींबू है, रस है, शिकंजी है, चाय है, नाने धोने की व्यवस्था है, डीजे की डांस प्रोग्राम है, सर्फ श्रद्धालु को नाने की व्यवस्था है, टैंकर खड़ा पास में, सब चीज की व्यवस्था है।
1: जो हम मेले में आते हैं ना तो उस समय सबसे बड़ा श्रद्धालुओं के लिए जो परेशानी का सबब होता है तो उनको ऐसी सुविधाएं ठहरने खाने पीने की मिलती हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, बाबा के प्रति श्रद्धा अपार होने के कारण ऐसी संस्थाएं अपना काम कर पाती हैं और वो भी कहते हैं कि बाबा की कृपा से हो रहा है। तो आपने आपका क्या रोल है इस?
3: हमारा ये रोल है कि पानी है, हमारा जमीन है, आप हमारी है, इसको दी हुई है, लगाओ आप, टैंकर हमारा लगा हुआ है, पानी का जमीन हमारी है और ये सेवा दे रहे हैं, खाना पानी सब, सुबह नाश्ता है, रात को 12-13, 12-1 बजे तक रहता है लंगर।
1: अच्छा, यहाँ पर जो सेवादार है उनका जो की काम करने वाले भी चाहिए, क्या उनको कोई पे देना पड़ता है या फ्री में वो सेवा दे रहे हैं?
3: फ्री में दे रहे हैं सेवा, सब फ्री में सेवा दे रहे हैं।
1: सेवादार है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया?
4: डिंपल कुमार जी।
1: आपका मन किया तो अपनी मर्जी से आयो सेवा?
4: हाँ जी।
1: कितने घंटे यहाँ पर क्या काम कर रहे हो?
4: 24 घंटे सर्विस है यहाँ पर, खाने पीने की, नहाने धोने की।
1: आप क्या काम कर रहे हैं?
4: हम तो कुल मिला के डबी लेकर करते हैं।
1: एक और सेवादार भैया, क्या नाम है आप?
5: भीमसेन जी।
1: आप क्या कर रहे हो?
5: आप जल सेवा दे रहे हैं जी।
1: जल सेवा, और देखिए, अच्छा आप यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप देखिए जो पेशेंट किस तरह के यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या सेवाएं?
5: ज्यादातर पैरों में छाले हो रहे हैं, उनको पट्टी कर रहे हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी के पेट के अंदर, सभी तरह की दवाइयाँ हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आने देते पेशेंट को।
1: कितनी बढ़िया सुविधाएं एक छोटी सी संस्था द्वारा छोटी सी जगह पर, बाबा के यहाँ ढाणी है छोटी सी और यहाँ बाबा रामदेव के वंशज बहुत सारे यहाँ पे निवास करते हैं। ये 8 साल हो गए?
2: 8 साल हो गए। मंडी डबवाली पंजाब से आते हैं जी, हरियाणा से, पंजाब के बॉर्डर से, 8वां भंडारा है।
1: बहन जी, बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये चल रहा है जो भंडारा बाबा के भक्तों के लिए, तो आपका इसमें क्या रोल रहता है, आप यहाँ पर क्या काम देख रहे हैं?
6: जो भी सेवा बाबा जी देते हैं वो करते हैं,
1: जो बाबा जी आदेश देते हैं। अच्छा।

0: खाने की बात करें तो मुझे मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा खाना, साफ सफाई बहुत अच्छी है और भक्त लोग बड़े आराम से आनंद के साथ खाना खा रहे हैं। क्या क्या खाने में उपलब्ध करा रहे हो?
1: जो भी जैसे पूरी छोले हलवा हो गया, मतलब जितना जो भी श्रद्धा से जो भी कहते हैं वही बना देते हैं और सब सब यहाँ पे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।
0: सभी निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये श्रद्धालु हैं और बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम है भैया?
2: मेरा नाम मंगत राम है।
0: कहाँ से आए आप?
2: मैं जैसर से आया हूँ।
0: अच्छा, देखिए ये खाना कैसा लग रहा है आपको? घर जैसा है?
2: बहुत बढ़िया है।
0: तो देखिए हम रास्ते में आते हैं और ऐसी जगह पर जब ये सुविधा मिलती है तो ये सब कृपा बाबा की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसी जगह पर ये सब सुविधाएं पाकर, यहाँ नहाने धोने की, खाने पीने, दवाइयाँ, सिकंजी, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
3: दूर प्रदेशों के कई व्यापारी इस मेले में कई वर्षों से आ रहे हैं। हमने कुछ व्यापारियों से बात की।
0: बाबा रामदेव के मेले में वैसे तो बहुत सारी चीजें लोकप्रिय हैं, लेकिन मैं बात करूं मथुरा की, तो मथुरा के दुकानदार पीढ़ियों से यहां पर इस मेले में आते रहे हैं और जो मथुरा में जो माणक मणियां, जो मालाएं जो मिलती हैं वो यहां पर लेके आते हैं और हमारे साथ भैया। क्या नाम भैया आपका?
4: मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर।
0: रविंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितनी पीढ़ियों से इस मेले में अब आ रहे हैं?
4: हम चार पीढ़ियों से सर रामदेव का मेला करते हैं, हर साल रेगुलर भादवा का मेला करने आते हैं। सर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है मथुरा में, हम अब स्वयं ही बनवाते हैं माल को और यहाँ बेचने के लिए आते हैं मेला करने के लिए। हम लोग एक महीने रहते हैं, रक्षाबंधन से 10 दिन पहले आते हैं और भादवा का पूरा महीना करने के बाद हम लोग जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इस समय हमारे साथ में एक ढोलक बड़ी लोकप्रिय है यहाँ पर मेले में और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग पसंद भी करते हैं और ये भैया बेचने आते हैं। भैया कहाँ से आए आप?
5: जयपुर से आए।
0: अच्छा, आपके जो ढोलक आप खुद बनाते हो या खरीद के लाते?
5: हम खुद ही बनाते हैं, हमारा धंधा है।
0: अच्छा, तो आपसे पहले आपके पिताजी वगैरह कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर?
5: आ रहे बहुत साल से पहले से आ रहे, आ रहे कम से कम हमारी पैदाइश नहीं थी।
0: पहले आपके पिताजी आते?
5: हाँ, हमारे पहले पिताजी आते, पिताजी के पिता आते थे।
0: तो इस समय हम रुणीचा नगरी में जो मार्केट है और बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और सचमुच मेले का दृश्य अद्भुत है। और यहाँ पर इस समय मैं एक दुकान पर हूँ, यहाँ पर बड़ी खुशबू आ रही है और मैं भैया से जानता हूँ ये किस चीज की खुशबू है इतनी सुंदर। भैया ये खुशबू किस चीज की है? देखिए
6: ये गूगल धूप है, जो बाबा को धूप छटता है उसके लिए गूगल धूप की खुशबू है। इसमें अलग प्रकार के धूप है, गूगल, लोबान, भतीजा, चंदन भतीजा।
0: ये जो है ना मैं देख पा रहा हूँ, ये यही का है क्या? जैसलमेर या रामदेवरा के आसपास ये पैदा होता है?
6: ये पैदा होता है जैसलमेर में, देसी गूगल बोलते हैं। ये जो बाबा रामदेव जी का प्रिय धूप है गूगल धूप,
0: बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तो बाबा की धूप करने के लिए चढ़ाते हैं और घर पे भी लेके जाते हैं क्या?
6: ये देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु ये धूप के रूप में ले जाते हैं, जो घर में पूजा के रूप में यूज करते हैं।
3: बाबा की समाधि के पास स्थित है पवित्र राम सरोवर। श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन कर पवित्र राम सरोवर में स्नान कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं।
0: क्या नाम है आपका?
7: गीता देवी।
0: गीता देवी जी कहाँ से आए आप?
7: हम पाली जिला से आए, आके बहुत अच्छा लग रहा हमसे, सबसे ज्यादा हमें नाडी में नहाने का अच्छा लगता।
0: अच्छा, बाबा के दर्शन हो गए?
7: हाँ, बाबा के दर्शन हो गए, बाबा की झंडी देख देख के बहुत खुश हो जाती हूँ मैं।
0: अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ?
7: हम 2 बार पैदल आ चुके, 18 बार आ चुके रेल के अंदर।
0: अरे वाह, देखिए कितनी श्रद्धा है, 18 बार ये आ चुके हैं। और कब तक आते रहोगे और क्या मांगा बाबा से?
7: हमने मांगा है आत्मा से, बाबा जानता है राम भरोसे की खीर है और बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, आप बताना नहीं चाहती लेकिन बाबा को जरूर बताया होगा आपने क्या मांगा है ना।
3: राम सरोवर पर बाबा के भक्तों की कई भजन मंडलियां दिन रात बाबा की भक्ति में लीन रहती हैं।
8: अरे घोड़ो बावरो घूमयो ओरणुजा वाले, ओरणुजे वाले अजमल जीरे लाले, अरे गुड़लो बावरो ये घुमायो रे रणु।

पोंगल घर में रहेगी। अर सुगना ले ले आयो रानुजा वालो वो मसूरिया वालो, अरे घोड़ो बावरो ये घुमायो रे रानुजा वाले। ओ रानुजे वाले ये द्वारका वाले, खमा घोड़ो बावरो ये घुमायो रे रानुजा वाले। घोड़े लारी साल बाबा गाना माले रेगी, और एक हो तो रत्ना ले ले आयो रानुजा वालो, और एक गुल्लो बावरो ये घुमायो रे।

0: ये घुमायो रे रानुजा वाले।
1: इस प्रकार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ हुआ बाबा रामदेव का मेला एकादशी को संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जैसलमेर से प्राप्त रामदेवरा मेले 2026 की रेडियो रिपोर्ट। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमे चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोलों को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए अंदाज फिल्म का गीत।

अंदाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। इसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनीता ठाकुर।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर हाजिर हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल और वो भी कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता
1: और रोशिबिना देवी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में लगातार तीसरा वुशु मेडल सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक पक्का।
1: और मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी और जादूमणि सिंह का शानदार आगाज, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: और महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया से होगा मुकाबला।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है देश को। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2. The defending champions, if you may. They said no, we're attacking champions once again. A margin of 147 runs. India win by 147 runs to clinch gold here in the grand finale.
2: फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 गेंद पर 48 रन बनाए। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे विकेट के लिए स्मृति के साथ 42 रन की साझेदारी की। कप्तान ने 19 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने स्मृति के साथ पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने 45 गेंद पर 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली। ऋचा ने भी 3 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 49 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 216 रन बनाए। 217 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन की पारी खेली। काविशा दिलहारी ने 11 और कौसिनी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू भी नहीं सकी। दीप्ति शर्मा ने 1.5 की इकोनॉमी रेट से 1 मेडन ओवर के साथ महज 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। फरहतनाज, स्पोर्ट्स कैम।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन का कर दिखाया है। फाइनल में उन्होंने 45 गेंद पर 79 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
3: वाह, क्या बात है प्रशांत। एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता है, और इस मुकाबले के दौरान क्या कुछ कीर्तिमान भी भारत ने बनाए?
0: बिल्कुल विनीता, टीम ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ये रनों के लिहाज से टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
3: क्या बात।
0: इससे पहले भारत ने मलेशिया को एशिया कप 2018 में 42 रनों से हराया था। और विनीता, श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि फाइनल में मिली हार के बावजूद श्रीलंका ने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि फाइनलिस्ट थे वो भी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए वो फाइनल में थी, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
3: क्या बात है प्रशांत। आज पुरुषों का भी मुकाबला खेला गया, तो कैसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन?
0: विनीता, अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये फ्रेंडली मुकाबला था। पुरुष को भी एशियन गेम्स खेलना है, 28 अक्टूबर से मुकाबला होना है सितंबर से, तो लेकिन 5 ओवर का गेम हो सका विनीता, 20 ओवर का गेम होना था लेकिन बारिश के कारण 5-5 ओवर ही खेल हो सका। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। 33 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम 30 रन ही बना सकी और 2 रन से रोमांचक मुकाबला हार गई। विनीता, मैं आपको यह भी बताऊं कि भारतीय पुरुष टीम 28 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी, और महिला टीम की तरह ही भारतीय प्रशंसकों को पुरुष टीम से भी स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन भी है भारत का, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है, जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज, शिवम दुबे है, तो उम्मीद की जाए कि भारतीय टीम जो है वो पदक का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा।
3: बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्वर्ण पदक बस मिल ही जाए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करती हुए एक कुछ हमारे लिए भेजा है। ये सराहना जो खिलाड़ियों के लिए की है उन्होंने, तो हम इसको सुने।
4: I am so happy that cricket is won gold, and I was there in the coordination committee of organizing in the Japan Asian Games coordination committee. So I only request them to add the cricket this time and even so they accepted, and so I just want to see the players are winning gold medals. So I'm so happy that we have won the gold.
0: और अब चलते हैं एशियन गेम्स के वुशु गेम्स की ओर। भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन

0: की चूमैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रोशिबिना ने एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: 18 और 2022 एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रोशिबिना ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा कॉन्टिनेंटल मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने पॉइंट्स के अंतर से मैच 5-0 से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रोशिबिना ने इससे पहले सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। मौजूदा एशियन गेम्स में वुशु में भारत का ये पहला पक्का मेडल है। रोशिबिना एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जब वो सांडा 60 किलोग्राम कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2018 जकार्ता खेलों में भी इसी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा भारत के आर्यन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जो अब मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। आइए एक रिपोर्ट सुनते हैं जागरण।
3: आयुष शेट्टी हैज डन व्हाट लक्ष्य सेन डिड, व्हाट साईरंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी डिड। ही हैज टेकन इंडिया टू एशियन गेम्स 2026 सेमी फाइनल। दैट्स हिज फर्स्ट आउटिंग इन एशियन गेम्स एंड बॉय ही इज डिलाइटेड विद द कोचेस। Pulela Gopichand is ecstatic inside for sure and so is Ivansa, the Indonesian coach.
2: भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही प्रतियोगिता में अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। लक्ष्य सेन ने शुरुआती सिंगल्स मैच में कोडाई नारोका की कड़ी चुनौती का सामना किया। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल के करीब पहुंचा दिया। वहीं अंत में आयुष शेट्टी ने कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। पहला गेम 11-21 से हारने के बाद लक्ष्य को काफी संघर्ष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीत कर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचाया। तीसरे गेम में नारोका ने फिर से बढ़त बनाई और 5 अंकों की बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी की। उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर किया और फिर अगले 2 अंक जीत कर 11-21, 21-5, 21-19 से जीत हासिल की। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरो होके और युगो कोबायाशी को पहले गेम में 21-18 से हराया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। जापान ने 3 मैच पॉइंट बचाए और स्कोर 20-20 कर दिया। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और आखिरकार 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। वहीं अंतिम मुकाबले में आयुष शेट्टी ने वातानाबे को पहले गेम में 21-10 से हराया। आयुष ने दूसरे गेम में भी निरंतरता बनाए रखते हुए मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत सेमी फाइनल में पहुंच गया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: बैडमिंटन में भी अगर हम बात करें श्रोताओं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। आयुष शेट्टी की बात कर ले, सिंगल्स कई सिंगल्स खिताब जीते उन्होंने, लक्ष्य सेन ने कई खिताब जीते हैं और जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर 5वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट कोई भी हो, भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों को उनसे पदक की उम्मीदें होती हैं। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय टीम को जापान से आज 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
2: क्या बात है, अब बैडमिंटन की बातें हो गई तो बातें मुक्केबाजी की हो जाए। एशियन गेम्स मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी ने आज शुरुआती राउंड में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आयरा विलेगास को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट नेहा से।
4: साक्षी ने निशियो जिम्नाशियम में अपने एशियन गेम्स में डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फिलिपिनो बॉक्सर को 5-0 से हराया। उन्होंने 10-9 के स्कोर के साथ तीनों राउंड जीते। साक्षी के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। बृहस्पतिवार को उनका मुकाबला मौजूदा 51 किलोग्राम वर्ल्ड चैंपियन अलुआ बल्की बेकोवा से होगा। वहीं भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी। इसी के साथ जादूमणि ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट ने यह बाउट निशियो जिम्नेशियम

0: में जीती। जादूमणि ने शानदार मुकाबला करते हुए थापा पर 5-0 से जीत हासिल की। जादूमणि ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के खिलाफ धीमी शुरुआत की, लेकिन मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और तीनों राउंड में सटीक पंच से जजों को प्रभावित किया। शुरुआती 2 राउंड जीतने के बाद जादूमणि ने अपना दबदबा बनाए रखा और तीसरे राउंड में एक लेफ्ट हुक लगाया, जिसे थापा को स्टैंडिंग काउंट का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने तीसरा राउंड भी जीता और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जादूमणि अब शनिवार को प्री क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के बॉक्सर कार्लो पालाम से भिड़ेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैंप।
1: साक्षी चौधरी हो, जादूमणि सिंह हो, इन्होंने कॉमनवेल्थ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत को कई पदक दिलाए थे और एशियन गेम्स में भारत को इन मुक्केबाजों से पदक की उम्मीदें होंगी। और अब चलते हैं टेबल टेनिस की ओर। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो भारत की महिला टीम ने आज थाईलैंड को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने 2-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नॉर्थ कोरिया से होगा। यशस्विनी घोड़पड़े ने 2 जीत के साथ भारत को मुकाबले में बनाए रखा, जबकि सृजा अकुला ने ओलंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट सुथासिनी साइबेतक पर 3-1 से जीत हासिल करके मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने अब तक एशियन गेम्स टेबल टेनिस में 3 कांस्य पदक जीते हैं। यह सफलता जकार्ता 2018 में मिली थी, जहां भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स में देश के लिए पहला टेबल टेनिस मेडल जीता था। इसके बाद शरद कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स डबल्स में 1 और कांस्य पदक जीता। हंगजाऊ 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में 1 कांस्य पदक जीता, तो टेबल टेनिस से भी भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमने टेबल टेनिस की बातें की तो कबड्डी कैसे पीछे रह सकता है। तो कबड्डी की बात करें तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने प्रतियोगिता के अपने दूसरे मैच में पता है साउथ कोरिया को 63-31 से शिकस्त दे दी है। और सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा है और साउथ कोरिया को वापसी करने का तो कोई मौका ही नहीं दिया। और प्रशांत, और क्या बोलते हो कि भारतीय जो यूनिट है मैच में कैसा
1: बेहतरीन प्रदर्शन किया है
2: ना?
1: इतना बात अगर हम करें तो कोरिया के 23 पॉइंट के मुकाबले उन्होंने 38 पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि डिफेंस ने कई सफल टैकल के साथ रेडर्स का भरपूर साथ निभाया। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम भी रही है विनीता।
2: जी जी बिल्कुल,
1: अब तक हुए 13 टूर्नामेंट्स में से 11 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है।
2: बिल्कुल, ये गेम ही ऐसा है कबड्डी, बिल्कुल स्पीड वाला पूरे ओवर से खेला जाता है और हमारी टीम पुरुष टीम ने 9 में से 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और सिर्फ जकार्ता में ही नहीं, 2018 की बात करें उन्हें वैसे तो वहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन कांस्य पदक मिला था। और महिला टीम ने तो 4 में से पता है कितनी बार स्वर्ण पदक लिया?
1: जी
2: 3 बार स्वर्ण पदक लिया और 2018 में उन्होंने रजत पदक से ही काम चलाया। वैसे हमारी उम्मीदें तो हमेशा रहती है कि हमें स्वर्ण पदक ही मिले।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विनीता को अनुमति दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के

0: लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
3: फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूठी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकरी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
5: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में

0: 200 से अधिक बैठकें हुई थी. दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शो केस टू द वर्ल्ड.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है. श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया. उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों की बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है. नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है. उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी. गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरूद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है. दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है. इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार मिला रही है.
2: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है. 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है.
3: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके.
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.
4: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो कहीं नहीं है. और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत की हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करा पाए हैं और इसमें 25 लाख कलर हमारे पास जुड़े हैं.
2: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा।

0: है दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने

0: को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में मुगल-ए-आजम फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद। प्यार किया तो डरना क्या।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में नजराना फिल्म से राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और रवि ने बनाई है तर्ज़।

0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।
1: अरे है

आइए अब सुना जाए मेरे महबूब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, शकील बदायनी ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुर का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है चाइना टाउन।

और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज

बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों चले, बैठ भी जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गाना हसरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल और आर डी बर्मन की है तर्ज़।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती की दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक खलनायक की।
1: भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर।
2: जय जय राम जी की। लखपति जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया।
3: प्रेम चोपड़ा, सिनेमा के पर्दे पर एक नहायत शरीफ है, मेरा मतलब है एक नहायत आवारा बदनाम शख्स, पर जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप फिल्मों में मेरे जुल्म देखकर मुझे गालियां देते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसे प्यार बता रहा हूं। पर इन गालियों में जो प्यार छुपा है, इस नफरत के पीछे जो मेरी तारीफ है, वही तो मेरी जिंदगी का अनमोल सरमाया है।

0: मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ।
1: पूरा हिसाब की किताबें?
0: हाँ।
1: तूने ये क्यों पूछा है?
0: इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ।
1: हिस्सेदार?
0: क्यों, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता?
1: नहीं नहीं पूरन, सब कुछ दे रही है, बोल तुझे क्या चाहिए?
0: 25,000।
1: 25,000? इतने रुपए?
0: मुझे रुपया चाहिए।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास?
0: तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूं।
1: कैसा सबूत?
0: यही कि तुम्हारे पास 5 रुपया है।
1: पूरन,
0: और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ।
1: कहां?
0: हनी राम के घर।
1: हनी राम? हाँ। आओ
0: आओ मेरे साथ।
2: अगर आप मुझे विलन के रोल में देखकर मुझे नफरत ना करें तो मैं कामयाब विलन नहीं बन सकता।
3: झूठ।

फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था, रेल का सफर था, न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए। गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते, जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया।

दोस्तों, शिमला में बीता है प्रेम चोपड़ा का बचपन। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और आ गए बम्बई। उनके पिताजी उन्हें फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिताजी की मर्जी के खिलाफ प्रेम चोपड़ा चले आए अभिनय की दुनिया में। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म थी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह, जो बड़ी मशहूर हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा अंग्रेजी के एक जाने माने अखबार के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी किया करते थे। वक्त निकालकर संघर्ष करते और अपनी तस्वीरें लेकर चल पड़ते निर्देशकों के दफ्तरों में काम मांगने के लिए।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से पहले एक बार मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर गया हुआ था। तीन चार बार जब वापस लौटा तो घर वालों ने बताया देवानंद साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन से देव साहब को अपने वापस आने की इत्तला दी। उन्होंने कहा फौरन मिलो प्रेम, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रोल है, कहानी सुनने के लिए 3 घंटे निकाल कर मेरे पास आना। मैं देव साहब के पास पहुंचा, मुझे देखते ही कहने लगे तुम खटमंडू के राजा हो, खटमंडू तुम्हारा है, खटमंडू तुम ले लो। जो कहानी देव साहब 3 घंटे में सुनाने वाले थे वो 3 लाइनों और 3 मिनट से भी कम वक्त में सुनाकर मुझसे माफी मांगकर चल दिए। मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया।

जब प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी की शुरू की तो दोस्तों ने बहुत समझाया पर उन्होंने एक न सुनी। उनके दोस्त उन्हें हीरो बनने की सलाह देते थे और प्रेम चोपड़ा थे कि किस्मत की लहर में खलनायकी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।

0: कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को भाई साहब कहते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे के पांव छूने को झुकते हैं। हमें उम्र के मामले पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। मैं कहता हूं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, वो जिद करते नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गांव के लोगों ने हमें घेर लिया, हर तरफ से आवाज आने लगी मनोज कुमार मनोज कुमार मनोज कुमार। जब मैं गाड़ी से निकला तो मनोज ने पूछा इन्हें पहचानते हो? आवाज आई जी हाँ ये प्रेम चोपड़ा ही तो है, उपकार वाले आपके बड़े भाई साहब। सुनते ही मनोज कुमार खूब हंसा और बोला देखो प्रेम मैंने पूरी 3 घंटे की फिल्म में तुम्हें अपना छोटा भाई कहा मगर लोग तुम्हें मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं, अब तो मान लो तुम मेरे बड़े भाई हो छोटे नहीं।
1: क्या चले जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ
2: और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को।
1: जानते हो कि नहीं?
2: तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है।
3: प्रेम चोपड़ा की संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चेहरे पे ऐसी चिकनी चुपड़ी नरमी होती है कि पूछिए मत, लेकिन नरम छुरी से जिगर को लहूलुहान कर देने वाली खलनायकी है प्रेम चोपड़ा की।
1: ये दुनिया को पश्चिम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा।
4: अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली।
2: तो मर जा बेटी।
4: नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा, चलाओ गोली।
1: हट जाओ, तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
4: हरिओम।
0: फिल्म कीमत के सेट पर एक बात बड़ा मजा आया। इस फिल्म में एक बहुत बड़े गैंग का मैं बॉस बना। बड़ा खौफनाक गेटअप था मेरा, मेरे साथ हर सीन में चंद खौफनाक कुत्ते रहते थे। एक सीन था मैं रोप से बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ से मेरे चमचे पालतू कुत्तों को लिए बैठे हैं। सामने हीरो यानी धर्मेंद्र को ला जाता हूँ, उसे देखते ही मैं एक भयंकर कहका लगाता हूँ। एक तो मेरा खौफनाक चेहरा और उस पर यह भयंकर कहका उन कुत्तों को अच्छा नहीं लगा शायद। और जो कुत्ते बैठे हुए बहुत छोटे से लग रहे थे, जब खड़े हुए तो उनका कद मुझसे भी ज्यादा बड़ा था और सब ने एक साथ गुर्रा कर मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ लपके। बस फिर क्या था, मैं सब अकड़ और बॉसपन बिल्कुल भूल गया और चिल्लाना शुरू कर दिया और सेट पर एक बहुत जोरदार कहकर भी

0: सा मन साफ करो माफ करो ओ बाबा माफ करो माफ करो ओ बाबा माफ।
1: फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा लंबे समय से मौजूद हैं और तरह तरह की खलनायकी की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रेम चोपड़ा को बतौर चरित्र अभिनेता देख रहे हैं कुछ फिल्मों में।

0: इन्हीं में से एक फिल्म थी उनके दोस्त राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया।
1: प्रेम चोपड़ा को फिल्म दो अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनकी सिल्वर जुबली फिल्मों में शामिल हैं दो जासूस, अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, दूल्हे राजा, फूल बने अंगारे, दाग, हुकूमत, पूरब और पश्चिम, उपकार, राजा जानी, आमने सामने, महबूबा, काला पत्थर वगैरह। फिल्म त्रिशूल का उनका किरदार तो आपको याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे।

0: फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छायागी
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: गोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशू जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणजी क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।

0: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है, वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarter finals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशू में। वुशू चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशू में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई।

0: फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशू से हुआ। सेंशू उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशू के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंशू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची। In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinnepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस

0: Pakistan Jemina took on Aryan Hussain in men's singles group D clash, where India beat Pakistan. Jemina simply was the better player against Pakistan's Aryan Hussain. The Indian took the match away from him completely, finishing the match with a scoreline of 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby completely outplaying his opponent.
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। द इंडियन मेन्स 4x100 मीटर मेडली रिले टीम कंप्राइज ऑफ उत्कर्ष पाटिल, दानुष सुरेश, बेनेडिक्ट बेनिस्टन एंड आकाश माने। The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश 4th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points, while Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in third place with 266 points.

0: points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमार का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया। चिन में साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। अब पेश नजर है फिल्म संगीत।

लबों को छीलू तो शाम हो जाए, तेरे प्यार में बहने का पैगाम आ जाए। ये जिंदगी तो है तेरी अमानत, तेरे नाम के साथ मेरा नाम आ जाए। इसी के साथ फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को शबाना शेख का प्यार भरा नमस्कार आदाब।

आगाज करते हैं थंगवान फिल्म के लिए मिक्सर जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, बोल साहिर के हैं और धुन हृदयनाथ मंगेशकर की है। बस मेरे मुस्कुराने की वजह बने रहना, जिंदगी में ना सही मगर जिंदगी बने रहना।

अभी आपने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में धनवान फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं निदा फासकी का लिखा गीत। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म से। इश्क के सफर में तेरा सहारा मिल गया, ऐसा लग रहा है जहान सारा मिल गया। अब रात की तन्हाइयों का डर नहीं हमको, चांद में रातों का मुझे सितारा मिल गया।

स्वीकार किया मैंने। सोम का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं दर्द फिल्म का दो गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज में। कलाम लक्ष्य लालपुरी का है और तर्ज खयाम की है। ये सांसों की खामी तुम्हारी ही रहेगी जब तक धड़कता है दिल, मोहब्बत तुम्हारी ही रहेगी।

अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में दर्द फिल्म का गीत सुना। अब सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश जुदाई फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं, बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। तुझसे इश्क करके आशिकाना हो गया, दिल की न पूछो ये दीवाना हो गया। तुझको जब से नजर भर के देखा है, ये मौसम और भी मस्ताना हो गया।

अभी आपने लता मंगेशकर और महमूद रफी की आवाज में जुदाई फिल्म का गीत सुना। और अब सुनते हैं अगली पेशकश प्यासा सावन फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, बोल संतोष आनंद के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। क्या नाम दो उस दिल दीवाने को, आशिकी में डूबे आशिकाने को, मोहब्बत को नजर न लगे किसी की, अब तो खबर हो गई है जमाने को।

प्यासा सा मैंने स्वयं का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में सुना। चंबल की कसम, आइए सुनते हैं स्वयं का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है साहिर और मौसीकी खयाम की है। तुम्हारे लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगा, बस तुम्हारा साथ मिले तो संवर जाऊंगा।

चंबल की कसम इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, और अब सुनते हैं होटल फिल्म का ये दो गाना आशा भोसले और मनहर की आवाज में। इंदुवर के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने। तुमसे इश्क है बस इतनी सी बात है, इसके आगे मेरी पूरी दुनिया बेकार है।

और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश मंजिल मंजिल फिल्म से आवाज शैलेन्द्र सिंह और आशा भोसले की है बोल मच रुके हैं धुन आरडी बर्मन की है। दूरियां हैं माना पर प्यार तो है मीनू के फासले सही पर एतबार तो है।

0: आपने शैलेन्द्र सिंह और आशा भोसले की आवाज में मंजिल मंजिल फिल्म का गीत सुना। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक का मतलब मोहब्बत हो, कुछ रिश्ते मोहब्बत में ऊंचा मकाम रखते हैं। इसी के साथ फिल्म संगीत अभी ही समाप्त होता है। FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी पांचवा का नया चैनल है। 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली के अंदर से।
1: वाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PD शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को

0: 初恋。मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: SMB 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का नहीं चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।